एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज बुधवार है। शक सवन 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि तदनुसार 1 जुलाई सन 2026 इस समय सुबह के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। लीजिए आप सुनिए हरिओम शरण के स्वर में ये पारंपरिक भक्ति गीत।

0: इसी भक्ति गीत के साथ आज का आस्था के स्वर कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: आस्था के स्वर।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आस्था के स्वर कार्यक्रम।
2: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
3: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
2: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुनिए आज का चिंतन। आलेख देवेंद्र जैन का है।
4: सद्गुण ही सच्ची संपत्ति और दुर्गुण सबसे बड़ी विपत्ति मानी जाती है। आज की सबसे बड़ी समस्या विचार प्रदूषण की है। विचार प्रदूषण से मनुष्य के सोचने का तरीका विकृत हो जाता है और वह स्पर्धा में अंधा हो जाता है। मनुष्य की जैसी सोच होती है वो वैसे ही आचरण करता है और वैसा ही बन जाता है। अर्थात चिंतन से चरित्र बनता है। चिंतन को श्रेष्ठ बनाने के लिए नियमित स्वाध्याय एवं सत्संग आवश्यक है। श्रेष्ठ पुस्तकों का स्वाध्याय करके अपने विचारों को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। अच्छी पुस्तकें जीवंत दीवालय हैं जो तुरंत प्रेरणा और प्रकाश देती हैं। प्रतिदिन श्रेष्ठ पुस्तकों का स्वाध्याय करना आवश्यक है। श्रेष्ठ साहित्य पारस पत्थर के समान है। जो श्रेष्ठ साहित्य पढ़ता है वो सोने जैसा श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला बन जाता है। नवकार महामंत्र

भक्तामर स्त्रोत्र, संतिकर स्तवन, वृहत शांति स्तोत्रम का नियमित स्वाध्याय मनुष्य करे तो वो इतना महान बन जाता है कि उसके संपर्क में आने वाले लोगों को भी मोक्ष मिल जाता है। नवकार महामंत्र के जप से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, परंतु भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने वाला स्वयं तो सर्वश्रेष्ठ बन ही जाता है, वे दूसरों को भी प्रबल प्रेरणा देकर उन्हें भी मोक्ष पाने का अधिकार दे देता है। नवकार महामंत्र के साधकों के लिए भक्तांबर स्तोत्र व वृहत शांति का नियमित रूप से स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। नवकार महामंत्र गुरु मंत्र है तो भक्तामर स्तोत्र गुरु ज्ञान है। बिना गुरु ज्ञान के गुरु मंत्र बेजान है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अपनी आत्मा में श्रद्धा और समर्पण की भावना जगाएं, यही सम्यक ज्ञान कहा जाता है। सम्यक ज्ञान से ही आत्मा परमात्मा बन जाती है। सम्यक ज्ञान

0: स्तोत्र गुरु ज्ञान है, बिना गुरु ज्ञान के गुरु मंत्र बेजान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अपनी आत्मा में श्रद्धा और समर्पण की भावना जगाएं, यही सम्यक ज्ञान कहा जाता है। सम्यक ज्ञान से ही आत्मा परमात्मा बन जाती है। सम्यक ज्ञान आत्मचेतना जागृत करता है तथा विषय कषाय का नाश होता है। जिस प्रकार से पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार सत्संग से मनुष्य के गुण कर्म व स्वभाव श्रेष्ठ बन जाते हैं। महात्माओं की संगति दुर्लभ है। आजकल तो असली साधु संतों और महात्माओं के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। सर्वत्र कपटी गुरु, ढोंगी सिद्ध महात्मा और आडंबर फहराने वाले मिल जाते हैं। श्रेष्ठ महात्माओं द्वारा लिखित साहित्य का नित्य स्वाध्याय करना ही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए।
1: अभी आपने सुना आज का चिंतन।

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन, तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना?
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।

0: सुरेश वाटकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए आज की कृषि चर्चा, वाचक स्वर जगदीप सिंह फरेगा।
1: सब किसान भाई बहनों का राम राम। किसान भाई बहनों, कृषि चर्चा में आज हम बात करेंगे तिलहनी फसल नमक तिल्ली की खेती आज की आवश्यकता विषय पर। जानकारी दीजिए ग्राम जसवाड़ी का युवा प्रगतिशील कृषक भाई पुष्पेंद्र सिंह मोरे न नवाचक स्वर छे जगदीप सिंह फरेगो। किसान भाई बहनों, हमारा जीवन में तिलहनी फसल न जैसे कि सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल्ली न सूरजमुखी जैसी फसल न को बहुत महत्व छे। ये फसल न सिर्फ दैनिक आहार में ऊर्जा और आवश्यकता आवश्यक वसा प्रदान करे, बल्कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, औद्योगिक कच्चो माल न साथ किसान न की आजीविका को मुख्य आधार भी छे। एका लेना तिलहनी फसल न को उत्पादन लेनो आज का समय में बहुत जरूरी हुई गई। तो किसान भाई बहनों, तिलहनी फसल न तिल्ली का तेल को भी विशेष महत्व छे। एका लेना तिल्ली की खेती करनो बहुत फायदेमंद छे, क्योंकि आज ओको उत्पादन कम होने से ओको बाजार में भाव भी अच्छो छे। न अगर हमारी कुछ फसल न की बोनी फेल या खराब हुई जाए तो ओका बाद भी तिल्ली की फसल उना खेत में आसानी से आई जाए, न भरपूर उत्पादन भी देज, न साथ ज हल्की न भारी दो ही प्रकार की खेती में पैदा हो जाए, न कम पानी में भी आई जाए। एक पूरी फसल की अवधि में लगभग 300 से 400 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता रहे, फिर भी खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊना स्थान की फसल की जड़ न ज्यादा पानी से गली जाए न। एका लेना खेत की तैयारी न जुताई की बात करा तो खेत की दुई से तीन बार जुताई करी न मिट्टी का भुरभुरी बने लेवा। एक बाद पाटो चले न खेत समतल कर लेवा ताकि बारिश को पानी कहीं भी रुका नहीं। खाद न उर्वरक की बात करें तो तिल्ली का सल्फर या गंधक की ज्यादा आवश्यकता रहे, साथ ही खेत की तैयारी का समय गोबर की सड़ी हुई खाद एक से दो ट्राली प्रति एकड़ मिट्टी में अच्छी तरह मिले देवा। रासायनिक उर्वरक न की बात करें तो बुआई का समय सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 100 से 150 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करा, एकासी खेत में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर की पूर्ति हो जाए। न अगर मिट्टी परीक्षण आप न करा रहे तो ओकी जांच के अनुसार उर्वरक डालना चाहिए। बोनी को उचित समय मानसून की पहली बारिश का बाद जुलाई का पहला हफ्ता से लीन जुलाई का अंत तक तिल्ली की बुआई उत्तम मानी जाए। तिल्ली की उन्नत किस्म की बात करा तो किसान बैठन अच्छा उत्पादन का लेना हमने प्रमाणित और उन्नत किस्म न को चयन करना चाहिए, जैसे कि TC25, RT125, RT127, RT46, नरो RT13, जवाहर तिल 12, जवाहर तिल 14, न अरु TKG 308 जैसी किस्म न लगे सकें। बीज न बुआई को तरीको, बीज ख बोना से पहला फफूंद नाशक जसो की कार्बनडाइजियम, ट्राइकोडर्मा या मैंकोजेप्सी उपचारित जरूर करा ताकि फसल में शुरुआती बीमारी ना नहीं लगी पाओ। एम बुआई की विधि की बात करा तो तिल्ली का बीज बहुत बारीक रह, एका लेना कतार न बुआई का लेना बीज नख बालू रेत में अच्छी तरह मिले लेवा तब बोवा, न कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर

0: ट्विटर और पौधा से पौधा की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। कृषि कार्य की बात करा तो वह तिल्ली मतलब पहली निंदाई गुड़ाई खोल अपनी 15 से 20 दिन में न दूसरी 30 से 35 दिन के बाद देनी चाहिए। खतरनाक नाशक ने की बात करा तो किसान भाई तिल्ली फसल खरपतवार नाशक का प्रयोग करना हो तो बोनी का पहले ज मिट्टी पर करी देनी चाहिए। फसल के साथ खरपतवार नाशक को छिड़काव करना खतरनाक हो सके। बीमारी न कीट नियंत्रण, तिल्ली की फसल में मुख्य कीट पत्ती जैसीड जैसा कीट लगज न बीमारी न फाइलोडी तनागलन या झुलसा न जड़ सड़न जैसी फफूंद जनित बीमारी न लगे। भाई उन्होंने बचाव न नियंत्रण की बात करा तो एम बुआई सी पहला तो हमना बीज नख कार्बनडाइजियम न ट्राइकोडर्मा विरडी सी उपचारित करी लेनी चाहिए। प्राकृतिक उपचार में जब पौधा 1 फीट का हो जाए तो लगभग 10 दिन पुरानी छाछ को छिड़काव करी देनी चाहिए तो लाभ मिलेगा। न रासायनिक छिड़काव में कीट न का प्रकोप से बचावना का लेना कृषि विशेषज्ञ न की सलाह सी उपयुक्त कीटनाशक जैसा कि इमिडाक्लोपिड या मोनोक्रोटोफ्रास को प्रयोग करा। न बारिश की लंबी खेच होए तो आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करी देवा तो भाई बहनों तिल को उत्पादन आपको भरपूर मिलेगा। तो आज की कक्षा में बस, तो जय राम राम।
1: अभी आपने सुनी आज की कृषि चर्चा, हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

इस सभा में अब से कुछ ही देर बाद यानी 7 बजे विशेष कार्यक्रम में सुनिए वार्ता एक कदम प्रकृति की ओर। वार्ताकार है नमिता जैन। एक ही फिल्म से सुबह 7:20 पर इसमें आप सुनेंगे फिल्म विवाह की स्टोरी व गीत। 8:15 पर निमाड़ी लोकगीत, इसमें आज के हमारे कलाकार हैं स्नेहलता भटोरे और साथी। 8:30 आपके मीत ये गीत कार्यक्रम और 9 बजे से आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। 10 बजे जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर नारी जगत में बहने सुनी वन महोत्सव पर मीता कौर साहनी कार्यवाहक वनपाल से मोना दफ्तरी की बातचीत, साथ ही इसी कार्यक्रम में होगा गीत संगीत। सुबह 10:40 पर सुगम संगीत के कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। 11 बजे से आप पुनः सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

शाम 5:30 पर एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। आज का क्रम है यूथ चॉइस। फिल्म संगीत शाम 6:30 पर। शाम 7:21 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में होगी उपयोगी भेंट वार्ता, मौसम मंडी भाव की जानकारी और निमाड़ी लोकगीत।

रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम और 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। 9:30 से रात 11 बजे तक आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।
1: अरे क्या बात है, सुबह की चाय और अखबार दोनों मिल जाए तो सुबह का आनंद दोगुना हो जाता है।
2: जी हुजूर, यदि चाय और अखबार के साथ हो निमाड़ की सुरीली धड़कन तो सुबह और भी सुहानी हो जाती है, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा, तो सुनते रहिए
2: निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा

पहली खबर है, खंडवा के महादेवगढ़ में सावन माह के दौरान 30 जुलाई से 29 अगस्त तक 30 दिवसीय महा अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं को अभिमंत्रित रुद्राक्ष प्रसाद के रूप में वितरित किए जाएंगे। अगली खबर है, पुलिस ने सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना था। अगली खबर है, बीड़ इटारसी साप्ताहिक पैसेंजर की समय सारणी रेलवे बोर्ड ने जारी की। रेलवे ने खंडवा बीड़ शहर के रैंक का उपयोग करते हुए साप्ताहिक मेंटेनेंस के लिए स्थायी नंबर के साथ नई ट्रेन के रूप में मंजूरी दी। इससे बीड़ से इटारसी के बीच यात्रा की सुविधा बढ़ेगी। अगली खबर है, इंदौर में मंगलवार को मध्य प्रदेश गन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें खंडवा की मेघा राकेश मालवी ने 3 गोल्ड 2 सिल्वर सहित 8 मेडल जीते हैं। अगली खबर है, जिले में ग्रामीण विकास और मनरेगा का आधिकारिक पोर्टल बंद हो गया है। इसके चलते खंडवा जिले के करीब 1.25 लाख एक्टिव जॉब कार्ड्स के अपडेशन का काम रुका हुआ है। परियोजना अधिकारी के अनुसार योजना का नाम बदलने के साथ ही नए जॉब कार्ड बनाए जाने की संभावना है। अब एक नजर खेलों के हाल पर। ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में जिम्बाब्वे ने 85 रनों से जीत दर्ज की। साथ ही T20 सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच बुधवार को खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा।

0: अब एक नजर मौसम के हाल पर। कल खंडवा जिले का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आज की ताजा खबर का संकलन शहबाज उस्मानी का।
1: आज की ताजा खबर।

0: अरे पिंकी के पापा, आप इतनी देर से मोबाइल पर क्या सुन रहे हैं?
1: अरे सुषमा, मैं सुन रहा हूँ निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
2: ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा।
3: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजे हैं। विशेष कार्यक्रम में लीजिए सुनिए वार्ता एक कदम प्रकृति की ओर। वार्ताकार हैं नमिता जैन।
4: प्रिय श्रोताओं नमस्कार, आज की हमारी वार्ता का विषय है एक कदम प्रकृति की ओर। प्रकृति की ओर बढ़ने से पहले हमें प्रकृति को समझना होगा कि आखिर प्रकृति क्या है, प्रकृति में क्या क्या समाहित है। वर्तमान समय में चूंकि मनुष्य बहुत स्वार्थी हो चुका है, इसलिए बिना मतलब के कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहता है। इसलिए हम यह भी समझेंगे कि प्रकृति से मनुष्य को क्या क्या लाभ है अथवा क्या क्या लाभ हो सकते हैं। प्रकृति शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी में सहज रूप से ही अपना लिया गया है। संस्कृत में प्रकृति शब्द का अर्थ है आधार। प्रकृति शब्द प्र और कृति शब्दों से मिलकर बना है, जहां प्र का अर्थ पहले या मुख्य और कृति का अर्थ रचना या सृजन होता है। इसलिए प्रकृति का अर्थ हम कह सकते हैं मुख्य रचना। प्रकृति को हिंदी में स्वभाव गुण और उर्दू में तासीर भी कहा जाता है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है। सामान्यतः प्रकृति से तात्पर्य पेड़ पौधों से लिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जैसे तत्व भी शामिल हैं। साथ ही साथ छोटे जीव जंतु, जानवर, संपूर्ण मानव जाति, सूरज, चांद, तारे और अन्य सभी प्राकृतिक चीजें शामिल हैं। सरल शब्दों में कहें तो वह सब जो मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है बल्कि अपने आप विकसित हुई है, वह सब प्रकृति में ही समाहित है। इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य स्वयं ही प्रकृति का एक हिस्सा है, परंतु अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसने स्वयं को प्रकृति से अलग कर लिया है। साथ ही साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों का भी दुरुपयोग कर रहा है, जिससे प्रकृति पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते यह विश्व विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। संपूर्ण विश्व को विनाश से बचाने के लिए अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि मानव जाति पुनः एक कदम प्रकृति की ओर बढ़ाए और अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलकर प्राकृतिक संसाधनों से स्वयं को और प्रकृति को परिपूर्ण बनाए। एक कदम प्रकृति की ओर बढ़ाने के लिए, प्रकृति का संरक्षण करने के लिए हम कई चीजें कर सकते हैं, जैसे पेड़ लगाना अथवा वृक्षारोपण करना। आप जरा सोचिए, मात्र एक वृक्षारोपण से ही हम प्रकृति के कितने पास जा सकते हैं, क्योंकि वृक्षारोपण के एक नहीं अनेक फायदे हैं। वृक्ष हमें ऑक्सीजन, फल, फूल, खाद्य सामग्री, लकड़ी, छाल, औषधि आदि अनेक सामग्रियां उपलब्ध कराते हैं। हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकृति से हमें अनेक औषधियां प्राप्त होती हैं, जिससे अनेक लाइलाज बीमारियों की दवाइयां बनाई जाती हैं। इससे शहरों से बाहर जहां जंगल है, वहां हम इन औषधीय गुणों से युक्त वृक्षों का पौधारोपण कर सकते हैं। फर्नीचर में उपयोग आने वाले वृक्षों को भी लगा सकते हैं। अनावश्यक कटाई को रोककर भी हम प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। आजकल विदेशों में एक नई तकनीक को अपनाकर वृक्ष को जड़ से न काटकर उसे उसकी जड़ सहित ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया जा रहा है, जिससे वृक्षों की अनावश्यक कटाई पर रोक लग गई है। हमारी सरकार को भी इस तकनीक के बारे में विचार करना चाहिए। ग्रीन जोन को भी बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। वर्तमान समय में मनुष्य आधुनिकता की होड़ में बड़ी बड़ी टाउनशिप्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बनाने के चक्कर में जंगलों का तेजी से सफाया करता जा रहा है, जिसके कारण बड़े बड़े शहरों में पेड़ पौधों की मात्रा कम हो गई है। इसलिए वहां पर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी है। चूंकि यह समस्या मनुष्यकृत है, इसलिए इसका समाधान भी हमें ही निकालना होगा। इसके लिए बड़ी बड़ी टाउनशिप्स, फैक्ट्रीज में और उनके आसपास भी बड़े बड़े पेड़, जैसे नीम, पीपल, बरगद, आम, जामुन आदि के लिए जगह छोड़ी जानी चाहिए। मल्टीज में भी बालकनी होनी चाहिए, जहाँ पर हम छोटे छोटे प्लांट्स, जो कि जगह भी कम घेरें और ऑक्सीजन भी अच्छी मात्रा में दे, उन्हें लगा सकते हैं। कुछ पौधे जैसे मनी प्लांट, एलोवेरा, तुलसी, वाइल्ड जरबेरा, स्नैक प्लांट, आर्किड आदि शामिल हैं। यह पौधे हर वक्त ऑक्सीजन देते हैं, साथ ही साथ अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण भी करते हैं।

इसलिए इन्हें घर में लगाने से घर का वातावरण भी अच्छा रहता है और ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मिलती है। प्रत्येक घर में एक छोटा सा किचन गार्डन होना चाहिए जहाँ पर यह सभी प्लांट्स हों, साथ ही कुछ सब्जियों को भी, जैसे पालक, कोथमीर, मिर्ची, आलू, गाजर आदि को भी हम घर पर अपने ही गमलों में उगा सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में हरियाली भी दिखती रहे और रोज़मर्रा की सब्जी का काम भी हो जाए। अपने घरों के अलावा बाहर कॉलोनी की सड़कों पर भी हम गुलमोहर, अशोक आदि जैसे वृक्ष लगाने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके कारण आपका एरिया ग्रीन जोन कहलाए। इससे पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आने लगेगी और आप चैन की सांस ले सकेंगे। वर्तमान समय में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और पेड़ पौधों की संख्या घटती जा रही है, जबकि जितनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ रहेंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, पानी को आकर्षित करेंगे, राहगीरों को छांव प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त हम जैविक खेती पर भी बढ़ावा दे सकते हैं। गाँवों में भी हम यह सब कर सकते हैं, साथ ही खेतों में जैविक खेती का प्रयोग करने में जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे फसल तो अच्छी आएगी ही, साथ ही वह पौष्टिक और सुरक्षित भी होगी। फसलों पर छिड़कने वाले रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी, फसल और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जैविक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा, जल संरक्षण बढ़ेगा। इस प्रकार से जैविक खेती न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है। यह प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका है। हम पानी की बचत करके भी प्रकृति को सहेज सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में गर्मी का मौसम आते ही पानी की किल्लत होने लगती है। इसका मूल कारण है पानी की कमी। यदि हम अनावश्यक रूप से पानी की बर्बादी करेंगे तो पानी की कमी आना तो स्वाभाविक ही है। इसके लिए हम पानी को भी पैसों की तरह सोच समझ कर व्यय करें, कम पानी में काम करने की कोशिश करें, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रयास करें, पानी को कृत्रिम झील, तालाब के रूप में सहेज कर उसका उपयोग कर सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन अथवा कचरे का रिसाइकल। वर्तमान समय में प्लास्टिक डिस्पोजल का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस कारण से किसी भी गांव या शहर में जाने से पहले हमारा स्वागत उस गांव या शहर के बाहर फैला हुआ कचरे का ढेर करता है। इसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए तो हैं। कचरे का घर घर जाकर संग्रहण करके उसे कचरे की छटनी करके उसको रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है, पर वह पर्याप्त नहीं है। हम जागरूक नागरिकों को भी अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। हमें अपने शहर, गांव, कस्बे, कॉलोनी को साफ रखना होगा। यहाँ वहाँ प्लास्टिक डिस्पोजल फेंकने से वह मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं, जिससे उस जगह से पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता है। हमें हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। इनके अतिरिक्त हम बिजली की बचत एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण करके भी प्रकृति की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकृति के साथ जुड़ने की, उसके फायदों की, तो वह भी बहुत सारे हैं। जैसे प्रकृति से हमें मानसिक शांति मिलती है। अच्छा, यह बताइए, क्या आपने कभी खेतों के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर पक्षियों की चहचहाट, रहट से गिरते हुए पानी की आवाज, बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज, समुद्र की लहरों की आवाज, नदियों, झरनों के बहते हुए पानी की आवाज सुनी है? यदि नहीं सुनी है तो इन आवाज को सुनने का प्रयत्न कीजिए। यह आपको प्रकृति के नजदीक लाएगा, साथ ही असीम शांति का अनुभव भी दिलाएगा। आप सभी ने शायद साउंड थेरेपी अथवा ध्वनि चिकित्सा के बारे में सुना होगा। यह एक प्रकार की वैकल्पिक चिकित्सा है जो विशिष्ट ध्वनियों, संगीत या कंपनों का उपयोग करके व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। इस थेरेपी में व्यक्ति को प्रकृति की इन्हीं आवाजों को सुनाया जाता है और इन्हीं की सहायता से व्यक्ति अनेक मानसिक बीमारियों का, उसके तनाव को दूर करने का उपाय किया जाता है। प्रकृति से शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यदि आपका मन अच्छा है, शांत है, तो जाहिर सी बात है कि आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और यदि व्यक्ति की नींद अच्छी होती है तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। प्रकृति के साथ जुड़ने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगता है, हमारी नींद की गुणवत्ता बढ़ती है। प्रकृति रचनात्मकता बढ़ाने में सहायक है। अनेक चित्रकारों, कवियों, लेखकों और रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रकृति प्रेरणा देने का कार्य करती है। प्रकृति उन्हें उनके मनोभावों को शब्द, आकार, संगीत, कलाकृति के रूप में उकेरने के लिए प्रेरित करती है। प्रकृति हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। खुला, निर्जन, एकांत स्थान जहाँ कोई शोर शराबा न हो, कोई आपको परेशान करने वाला न हो, वहाँ पर आपका ध्यान अपनी आत्मा की ओर आसानी से केंद्रित हो सकता है। हम एकांत में प्रकृति की गोद में बैठकर अपना मूल्यांकन करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे हम अपने दुर्गुणों को कम करके अपनी आत्मशक्ति को विकसित कर सकते हैं। इस तरह

0: प्रकृति के तो अनेक फायदे हैं, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कहाँ तक और किस तरीके से उसका लाभ ले सकते हैं, जिससे प्रकृति को भी कुछ नुकसान न हो और मनुष्य का भी काम हो जाए। तो आइए हम सब प्रण करें कि अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर ही हम प्रकृति की ओर एक कदम बढ़ाने का प्रयास करें।
1: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता एक कदम प्रकृति की ओर, वार्ताकार नमिता जैन। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल में भारी बारिश का जायजा लिया, कहा केंद्र और राज्य मिलकर संकट से निपटेंगे। वीवी जी राम जी अधिनियम आज से होगा लागू, ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में होंगे शामिल, और मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी में भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति भयावह है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने स्थिति का जायजा लिया है और इसके लिए चर्चा की है। संकट बड़ा है और चुनौती भी सामान्य नहीं है।
1: यहाँ भारी बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश में जो संकट पैदा हुआ है, स्थिति भयावह है, संकट बड़ा है और चुनौती भी सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी तत्परता पूर्वक कदम उठाए गए। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन। मैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि
0: कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। प्रधानमंत्री को यहां की स्थिति की रिपोर्ट दी जाएगी और हर संभव सहयोग भारत सरकार करेगी। श्री चौहान ने आज भी प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा लेने का आश्वासन दिया है। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीराम जी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश भर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर नए ढांचे में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। महोत्सव में कोदो कुटकी उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि का अंतरण, 494 करोड़ से अधिक लागत के 629 विकास कार्यों को लोकार्पण

0: एवं भूमि पूजन और हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव राज्य के कोदो कुटकी उत्पादक 3,941 किसानों के बैंक खातों में 2,82,99,300 रुपए की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। ये राशि किसानों को 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रदान की जा रही है, जिससे श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा, कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद भारती पारदी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल से ही जीवन है और जीवन के लिए पानी की बचत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन का अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी बीते 3 वर्षों से यह अभियान वृहद रूप से जन सहयोग से चलाया जा रहा है और बड़ी संख्या में जल संरचनाओं का संरक्षण एवं पुनरुद्धार किया है। कल राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल अलनीनो के प्रभाव से कम बारिश का अनुमान है, इसलिए प्रदेश में अमृत सरोवर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नदी संरक्षण जैसे जल स्रोतों के संरक्षण कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि
2: मुझे इस बात की प्रसन्नता है 19 मार्च से 30 जून तक लगभग 100 दिन में 10,514 करोड़ की लागत से 3,62,000 से अधिक ये हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, छोटे कूप, अमृत सरोवर इन सबका पुनरुद्धार किया।
0: रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली ने बड़े बाहरी झटकों का सामना करने के बावजूद जबरदस्त मजबूती दिखाई है। बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की प्रस्तावना में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत विकास दर, कम महंगाई, वित्तीय और गैर वित्तीय कंपनियों की बेहतर बैलेंस शीट और पर्याप्त बफर ने माइक्रो फाइनेंशियल स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक आधार उसे कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखते हैं और बाहरी झटकों से निपटने की ज्यादा प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 30 जून तक प्रदेश भर में 5,48,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 4,68,000 से अधिक विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है तथा 2,93,257 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत की उनकी यह पहली आधिकारिक यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। यह सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के अवसर प्रदान करेगा। प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक कुल 1,43,150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इनके बैंक खातों में 1,010,25,00,000 रुपए की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ICC महिला T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के ओवल में कल पहले सेमीफाइनल में उसने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 126 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 13 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कल मानसून जबलपुर, भोपाल, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिला स्तरीय बैंकर समन्वय समिति की बैठक में बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कर पात्र लोगों को तुरंत लाभ पहुंचाया जाए। मानसून के चलते नर्मदापुरम का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और शिवपुरी का माधव टाइगर रिजर्व आज से 30 सितंबर तक अगले 3 महीनों के लिए पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद किया जाएगा। सतपुड़ा के मढ़ई और चूरना कोर क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश पूरी

तरह से प्रतिबंधित रहेगा। झाबुआ जिले में साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 के सातवें दिन साइबर सुरक्षा रैली, नुक्कड़ नाटक और विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इंदौर के 100 सरकारी स्कूलों में ONGC CSR फंड और सांसद सेवा संकल्प के सहयोग से करीब 70 लाख रुपए की लागत से RO सिस्टम और वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में 29 स्कूलों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और बड़वानी जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी आज से शुरू हो गई है। ये खरीदी आगामी 10 अगस्त तक चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल में भारी बारिश का जायजा लिया। कहा, केंद्र और राज्य मिलकर संकट से निपटेंगे। बीबीजी रामजी अधिनियम आज से होगा लागू। ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:20 और 55 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक क्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार करें राखी जैन का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित फिल्म विवाह। यह फिल्म पारिवारिक है। फिल्म प्रेम, विश्वास, संस्कार, त्याग और पारिवारिक मूल्यों की सुंदर कहानी प्रस्तुत करती है। इसमें मुख्य भूमिका में है शाहिद कपूर, अमृता राव, जबकि अनुपम खेर, आलोक नाथ और सीमा विश्वास जैसे कलाकारों ने भी अपने प्रभावशाली अभिनय से फिल्म को यादगार बना दिया। इस फिल्म में संगीत दिया रविंद्र जैन ने। विवाह कहानी है पूनम और प्रेम की। फिल्म में प्रेम की भूमिका निभाई है शाहिद कपूर ने, जबकि पूनम का किरदार निभाया है अमृता राव ने। विवाह की कहानी शुरू होती है मधुपुर जैसे एक छोटे से गांव में रहने वाली पूनम से।
1: कभी कभी सोचता हूँ कितना अनोखा होता है बेटियों का संसार। जहाँ जन्मती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, वहीं से जड़ें समेटकर कहीं और पनपने के लिए चली जाती हैं। उनका अपना घर पराया हो जाता है और वे पराए घर की मालकिनें बन जाती हैं। नन्ही नन्ही कलियाँ देखते ही देखते एक दिन जगत जननियाँ बन जाती हैं। बेटी का पिता चाहे विदेश में बसा कोई बड़ा उद्योगपति हो, चाहे मुझ जैसा मधुपुर का एक छोटा सा फलों का व्यापारी, दोनों की नियति एक जैसी ही तो है। अपनी लाडली को नाजों से पालना, आशीर्वादों से सींचना और एक दिन ब्याहकर विदा कर देना। पर कुछ भी हो, बेटियां तो बेटियां हैं मेरी पूनम की तरह। प्यार से मैं उसे बिट्टू कहता हूं। वो मेरे स्वर्गीय बड़े भैया की इकलौती निशानी है। भैया भाभी के गुजरने के बाद ये मुझे उपहार में मिली। पूनम मेरी बेटी छोटी के साथ बड़ी हुई। बचपन से ही दोनों बहनों में सगी बहनों सा स्नेह था, लेकिन मेरी पत्नी रमा पूनम को कभी अपना ना सकी, क्योंकि रंग रूप में पूनम छोटी से अधिक सुंदर है।

0: मैं पूनम को अपने पास ही रखने लगा।
1: हाँ। आ, चाचा जी।
0: अरे मुनीम जी वापिस रखो, वापिस रखो। मैं स्नेह भरी एक नजर से उसे देखता, वो खिल-खिल जाती। मैं उसे कविताएं सुनाता, वो मेरे साथ गाती, हम अपनी आवाजें टेप करते।

0: कृष्णकांत पूनम को अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर मानते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी पत्नी रमा हमेशा पूनम से दूरी बनाए रखती है। रमा को लगता है कि पूनम की सुंदरता, उसकी सादगी उसकी अपनी बेटी की तुलना में उसे अधिक प्रशंसा दिलाते हैं, जिससे वह भीतर ही भीतर असुरक्षित और ईर्ष्यालु रहती है। इसके बावजूद पूनम कभी शिकायत नहीं करती और चाची के कठोर व्यवहार को भी चुपचाप सहन करती है। कृष्णकांत के दोस्त पूनम को देखते हैं और वो पूनम की शादी के लिए दिल्ली के उद्योगपति हरीश चंद जी का बेटा प्रेम बताते हैं। कृष्णकांत उन्हें पूनम की फोटो दे देते हैं।
1: हरिश्चंद्र जी नमस्कार।
2: अरे भगत जी आइए आइए, वेलकम।
1: क्या बात है, मरीन लाइफ, समुद्री जीवन।
2: हाँ बताइए, हमारे पोते के स्कूल का ये प्रोजेक्ट कैसा बन रहा है?
1: अरे ये तो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन सुबह सुबह।
2: दरअसल इसका होमवर्क पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो क्या कि कल क्रिकेट मैच देखने में रह गए थे, सो भुगत रहे हैं। जल्दी से सबमरीन चिपका बेटा, कलर मैं करता हूँ, टीचर को क्या पता चलेगा।
3: अंगूठियों वाले दादाजी।
1: हाँ।
3: स्काई का कलर कौन सा होता है?
1: नीला।
3: दादाजी।
2: हाँ?
3: आप क्या कर रहे हो?
2: हरा। सॉरी
3: दादाजी, ग्रो अप।
4: प्रणाम अंकल।
1: जीती रहो बहू, देख रही हो ना, 10,000 कर्मचारियों का बॉस एक बच्चे की आज्ञा का कैसे पालन कर रहा है।
4: दादाजी चुप ठहरे।
0: हरिश्चंद के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा सुनील, बहू भावना, और पोता राहुल। छोटा बेटा प्रेम है। प्रेम पढ़ा लिखा, जिम्मेदार, विनम्र और आधुनिक सोच वाला युवक है, लेकिन वह अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए शादी के लिए तैयार हो जाता है।
2: That's okay.
5: बाकी इतना जरूरी नहीं सर, आप बात कीजिए, बात कीजिए।
6: पापा, आज सब मुझे देखकर इतने खुश क्यों हैं? मैंने तो आज का गेम भी नहीं जीता।
2: सब खुश इसलिए हो रहे हैं बेटा, क्योंकि तुम्हारे लिए आज एक रिश्ता आया है।
6: यू मीन शादी?
2: इस साल तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, अब वक्त आ गया कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें। आज भगत जी आए थे घर पर, उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की सजेस्ट की है, पूनम नाम है उसका। पूनम के माँ बाप तो नहीं है, लेकिन अपने चाचा जी की लाडली है। वो लोग मधुपुर में रहते हैं। भगत जी बता रहे थे कि बहुत अच्छे और सीधे लोग हैं। अगर तुम्हारी हाँ हो तो अगले संडे हम मधुपुर जाकर लड़की से मिल सकते हैं।
0: जब भगत जी दोनों परिवारों को मिलवाते हैं तो वातावरण बहुत सादगीपूर्ण और पारंपरिक होता है।

0: कृष्ण कांत जी, हम लोग तो सब पूनम से मिल लिए। अब अगर इजाजत हो तो प्रेम और पूनम भी एक दूसरे से मिल लें, जाने पहचाने। भावना,
1: हम झूला झूलने जा रहे हैं।
2: अरे नहीं, बातें करने जा रहे हैं।
1: बातें नीचे नहीं आ सकती?
2: चाचा और आंटी को यहाँ पे बातें करनी है।
1: तो फिर हम क्यों आए हैं?
2: राहुल, अब एक भी सवाल नहीं पूछोगे, समझे?
3: हाय, आई एम प्रेम।
4: हमारा नाम रजनी है, आप हमें छोटी बुला सकते हैं। अगर आप दोनों का मामला जम गया तो हम आपकी साली कहलाएंगी।
3: प्लीज
2: बैठो पूनम, आप बैठिए ना।
3: भाभी बैठिए ना।
4: आप बैठिए ना।
1: सब बैठ क्यों नहीं रहे?
2: भाई छोटी, देखा जाए तो म्यू ही फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। उनके साथ बैठना चाह रहे हैं जो खुद एकांत ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा करें कि चाय की ट्रे यहाँ रखे और हम चले। ओके प्रेम, पूनम, ऑल द बेस्ट।
1: इनका एग्जाम है।

मैं नहीं जानता कि इस वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए। हम लोग मिले हैं ताकि हम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में फैसला कर सकें, लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे के बीते हुए कल के बारे में नहीं बात कर लेते, हम अपने आने वाले कल के बारे में कैसे सोच सकते। मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दिल्ली में की। देन फॉर अबाउट अ ईयर आई वेंट अब्रॉड। कुछ दिन जर्नलिज्म सीखा, कुछ दिन लिटरेचर। बेसिकली खुद को खोजता रहा। मेरे भैया कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ बिजनेस के मामले में। वो प्यार से मुझे भोलू कहते हैं। कॉलेज में एक लड़की मुझे पसंद थी, मेरी क्लासमेट थी, मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठती थी।

0: कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा ही हुआ, बाद में पता चला कि उसके उसके पहले से ही दो बॉयफ्रेंड्स थे। दोस्तों के साथ स्मोकिंग भी की, लेकिन जिस दिन भाभी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, उनसे वादा किया कि कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करूंगा। ये बातें मैंने पापा से भी नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा आपसे तो कहनी ही थी।
1: हरिश्चंद्र और कृष्णकांत बिना किसी दहेज या दिखावे की बात किए केवल बच्चों की खुशी को देखते हुए रिश्ता तय कर देते हैं। सगाई के बाद दोनों परिवारों में खुशी का माहौल बन जाता है।

0: से वादा किया कि कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करूंगा। ये बातें मैंने पापा से भी नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा आपसे तो कहनी ही थी।
1: हरिश्चंद्र और कृष्णकांत बिना किसी दहेज या दिखावे की बात किए केवल बच्चों की खुशी को देखते हुए रिश्ता तय कर देते हैं। सगाई के बाद दोनों परिवारों में खुशी का माहौल बन जाता है।

प्रेम और पूनम को शादी से पहले एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। वे परिवार के साथ यात्राएं करते, साथ बैठकर बातें करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच विश्वास और अपनापन बढ़ने लगता है।

0: पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो।
0: कैसे? एक बार फिर करना।

0: कुछ समय बाद प्रेम अपने काम के सिलसिले में जापान चला जाता है। प्रेम और पूनम में प्रेम बढ़ जाता है।
1: गुड मॉर्निंग,

0: Fasten your seat belt, sir.
1: Hamari shaadi mein abhi baki hai hafte chaar.
0: इधर घर में विवाह की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ शुरू हो जाती है। कृष्णकांत बेटी की शादी को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि हरिश्चंद भी बार बार ये कहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का दहेज नहीं चाहिए। उनके लिए सबसे बड़ा उपहार पूनम जैसी संस्कारी बहू है। लेकिन इन खुशियों के बीच रमा के मन में करवाहट पूरी तरह समाप्त, लेकिन पूनम उनके प्रति अपना सम्मान नहीं छोड़ती। विवाह के ठीक एक रात पहले अचानक घर में आग लग जाती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग किसी तरह बाहर आ जाते हैं, लेकिन रजनी अभी भी घर के अंदर फंसी हुई है। बिना अपनी जान की परवाह किए पूनम रजनी को बाहर निकालती है, लेकिन वो खुद आग में गंभीर रूप से झुलस जाती है।
2: Now if you'll excuse me, मुझे अपनी टीम के साथ ये केस डिस्कस करना है।

0: बारात निकलने की तैयारी में होगी, उन्हें कवर तो करनी होगी ना।
1: Hehehehe

0: हेलो,
1: हरीश चंद्र जी से बात करवाइए जल्दी प्लीज।
0: सर भगत जी।
2: हाँ हाँ भगत जी।
1: हरीश चंद्र जी अब भारत लेके मत आइए।

0: क्या हुआ पापा? एक्सक्यूज मी भावना, एक मिनट।
1: अरे क्या है?

0: क्या बात है भाभी?
1: जब तक हम सर्जरी की तैयारी करें, आप में से कोई एक पेशेंट से मिल सकता है। आइए।
2: डॉक्टर, क्या मैं एक बार दूर से चीची को देख सकती हूँ? प्लीज।
1: ओके, प्लीज वेट। आइए।

never got back.

0: पूनम की बारात आई है। वो देखो उसकी डोली सजी, कुछ देर में उसकी विदाई हो जाएगी।
1: उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत गंभीर है और लंबे उपचार की आवश्यकता होगी। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। रमा, जिसने जीवन भर पूनम के साथ कठोर व्यवहार किया था, यह जानकर टूट जाती कि जिस लड़की से वह ईर्ष्या करती रही उसी ने उसकी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वह रोते हुए अपनी गलती स्वीकार करती है और पहली बार पूनम को पूरे दिल से अपनी बेटी मान लेती है। जब प्रेम अस्पताल पहुंचता है और पूनम की स्थिति देखता है तो आसपास के लोग आशंका व्यक्त करते हैं कि शायद अब वह उससे विवाह नहीं करेगा। स्वयं पूनम भी ये सोचती कि उसके झुलस जाने के बाद प्रेम उसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन प्रेम उसके सभी डर दूर कर देता है। वह कहता

0: है कि उसने पूनम से उसके चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि उसके चरित्र, त्याग, साहस और प्रेम के कारण विवाह करने का निर्णय लिया था। उसके लिए पूनम पहले भी उतनी ही सुंदर थी और आज भी है। वह किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट के बिना अस्पताल में ही उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता है। यह दृश्य पूरे परिवार को भावुक कर देता है और सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद पूनम का उपचार जारी रहता है और धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार आने लगता है। परिवार के सभी सदस्य पहले से कहीं अधिक एकजुट हो जाते हैं। रमा अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगती है और पूनम उसे पूरे सम्मान और प्रेम से स्वीकार कर लेती है। अंततः प्रेम और पूनम का विवाह पूरे पारंपरिक रीति रिवाज के साथ संपन्न होता है।
1: तुम्हें घर ले जाने आई हूं पूनम।
2: घर चल बेटी।
1: बताइएगा। अरे बस ईश्वर की कृपा और आप लोगों के सहयोग से सब ठीक हो गया बेटा। मुनीम जी, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। डॉक्टर का कहना है कि कल हम पूनम को घर ला सकते हैं।
3: वॉल फ्रेम, पूनम आराम से तुम्हारे साथ दिल्ली जा सकती। वहां डॉक्टर चैन तो है ही, और जहां तक तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी का सवाल है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमसे एक बात करनी थी, थोड़ी सी पर्सनल है। प्रेम, ये जो ग्राफ्टिंग का ट्रीटमेंट है जिसे हम लोग आम भाषा में प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, ये कोई जादू नहीं। वक्त के साथ साथ हर घाव हर जख्म भर जाएगा, लेकिन उनके निशान जाते जाते जाएंगे। अब पूनम खुद को तुम्हारी नजरों से देखेगी प्रेम।
1: जानता हूं डॉक्टर।

0: चाची जी तुम्हें घर ले जाने आई हूं पुनः।
1: घर चल बेटी, वो घर जो तेरा मैका है, जहां तेरी मां है।

0: बेटी लेकर जा रहा। हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएगी।
1: कभी भी केवल बाहरी सुंदरता, धन या परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता, वह विश्वास, सम्मान, त्याग, धैर्य, करुणा और पारिवारिक मूल्यों पर टिका होता है। यही कारण है कि विवाह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि भारतीय परिवार, रिश्तों और वैवाहिक प्रतिबद्धता का एक भावनात्मक चित्रण मानी जाती है।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म विवाह। हम आकाशवाणी की खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है। अब समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की

0: घाना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे

0: होइएगा।
1: सभी मदरसों को यूडायस यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
2: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी।

0: फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई, और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब सुनिए निमाड़ी लोकगीत। निमाड़ी लोकगीत में आज के हमारे कलाकार हैं स्नेहलता भटोरे और साथी

0: स्नेहलता भटोरे और साथियों से अभी आपने सुना ये पारंपरिक लोकगीत।
1: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
2: आकाशवाणी खंडवा।
3: ये सिलसिला है प्यार।

पीछे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं स्नेहलता भटोरे के गाए निमाड़ी लोकगीत।

0: बनी तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।
0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में। स्वीकार करें राखी जैन का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सलीम मर्चेंट के गाए इस गीत से। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत सलीम सुलेमान का है और फिल्म है लव ब्रेकअप जिंदगी। पसंद आप सभी की। झिरनिया रतनपुर से है भागीरथ नायक, जितेंद्र सुभाष, रविंद्र शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य और गुनगुन। इसी गीत को पसंद किया है लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन मोहम्मद, हसनैन पवार, बाजा चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वमिका गंगराड़े। छिगांव देवी जिला खंडवा से पसंद किया है अशोक कुमार वाघे, वंदना, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे ने। जबलपुर से पसंद करने वाले हैं जिनेन जैन, महेंद्र, सत्येंद्र, अरुण चौरसिया। इसी गीत को पसंद किया है मलकापुर से संजय पाटिल, भावेश और प्रथमेश पाटिल ने। पटियाला से पसंद करने वाले हैं मुकेश भट्ट, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू और इनके परिवार के सदस्य। सनावत से इस गीत को पसंद किया मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमस खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री ने। निम्बोरा महाराज से पसंद करने वाले हैं बमन राव जोशी, हेमंत जोशी, मनीषा, अभिजीत जोशी, करिश्मा और अशोक देशमुख। बग बुड़वा पथरिया से पसंद करने वाले हैं नरेश नेताम और कुसुम नेताम। सनावत से इस गीत को पसंद किया दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार ने। कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूरा श्रीमाली ने। बीकन गांव से संतोष सातले, चंदन सारिका, रोहित, शुभम, शैलेंद्र और कंचनबाई सातले ने। संभाजीनगर से है राजेश सावले, राजदीप राशि और शीतल राजेश ने। इसी गीत को पसंद किया है इंदौर से वंदना परी, गणेश, कार्तिक, स्वाति और प्रयाग ने। घंटागढ़ चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया ने। आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अगला गीत हमने लिया है फिल्म मौसम से, आवाज शाहिद माल्या की, बोल इशात कामिल के और तज बनाई है प्रीतम ने, पसंद आप सभी की। खरगोन से है तिलोक चंद वर्मा, भागवत, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, समर, राज, आर्यन, आरोही और इशिका। वरवट वकाल बुल्ढाणा महाराष्ट्र से है नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय हागे। मोताला महाराष्ट्र से है विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार और आरती। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामरे, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। संबलपुर कांकेर से पसंद किया है फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव ने। पालथना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी और अमीना बी मंसूरी। बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से इस गीत को पसंद किया राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया नारंग ने। गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, रोहन और आर्य जायसवाल ने। कलंगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी पवार और इनके परिवार के सभी सदस्य। खंडवा से मोहम्मद हसनैन, मोइन, छोटू और मोहम्मद फाजिल। आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं आपके मीत ये गीत कार्यक्रम। लीजिए आप सुनिए जावेद अली के आवाज में संजय मासूम का लिखा गीत, संगीत प्रीतम का, फिल्म है जन्नत 2। पसंद आप सभी की। अहमदपुर खेगांव से कैलाश फुलमाली, सुभाष खंडाले, दीपक फुलमाली और समर फुलमाली। जामनी कला से है सब्बीर मंसूरी, साबिर मुन्ना मंसूरी, फैजल, सोहेल शहबाज और सिफान मंसूरी। इसी गीत को पसंद किया है जामली कला से माणकचंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर, प्रियांशी और दिव्यांश राठौर ने। छेगांव देवी से अशोक वागे, वंदना और कान्हा वागे। सनावत से इस गीत को पसंद किया है अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार पुठाना, संजय बामनिया, माया, कान्हा और कृष्णा ने। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से है वसंतराव भोजने और इनके परिवार के सभी सदस्य। सेगांव महाराष्ट्र से है मोहम्मद अनीस मुहाल, दानिश जुनेद और रिजवान मुहाल। सीतामढ़ी बिहार से है मुसर्रत जहां, तलत जहां, फरहत और नुसरत जहां। इसी गीत को पसंद किया है हरियाणा से अंकित कागड़ा,

मोनी कांगड़ा प्रिंस और साहिल कांगड़ा ने, दत्रेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा ने, ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता और वमिका गंगराड़े, सिंगार तलाई, खंडवा से राधेश्याम यादव, प्रभा, शालिनी, कामेश, भारती यादव और राहुल यादव, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेन शाह, इसी गीत को पसंद किया है। खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव, ईशान, कार्तिक और इनके परिवार के सदस्यों ने, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा और मधु बालूजा, सनावत से है धर्मेंद्र मालाकार, रीना, निशा, हैप्पी, दिलीप और सुनीता मालाकार, इसी गीत को पसंद किया है। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने, मोटका माफी जिला खंडवा से पसंद करने वाले हैं जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम ज्योति, शुभम देवी किशन, भावना मन मानस और कनिका पटेल, पालदानाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफीक पवार, बबलू मंसूरी, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, रानू और रौनक सेन, आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

आपके मीती गीत कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म नोटबुक से, आवाज कमाल खान की, संगीत विशाल मिश्रा का और बोल लिखे किशोर कौशल किशोर ने। पसंद आप सभी की। मेरठ से अनिल जैन, संयम मुस्कान और जिव्यम, ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा सपना, ओम द्वारका बाई, गिटारी लाल और मनीषा बाई चौधरी। इसी गीत को पसंद किया बुरहानपुर से मोहन मुतलियार, आर्शिया आरुष और राजेश कुमार ने। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति और सावित्री देवी। बड़ा बम चौक खंडवा से है ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुषा जोशी, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी। सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सुरेश और सोनाली नारंग। मलकापुर से संजय पाटिल, उषा प्रथमेश, निवृत्ति क्षीरसागर, संजय कुमार चौहान। महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवांडकर, सरिता प्रणीता, सिद्धांत अर्जुन और एकांश गवांडकर। रोहतक से इस गीत को पसंद किया है सीताराम कांगड़ा, बबीता, निखिल और तन्वी कांगड़ा ने। दिल्ली से इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया।

आपके मीत ये गीत कार्यक्रम की आज की अंतिम प्रस्तुति में सुनिए रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल की आवाज में गुलजार का लिखा गीत, तर्ज बनाई है साजिद वाजिद ने और फिल्म है वीर, पसंद आप सभी की। पदमपुरा गंगानगर से है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। चंडीगढ़ से है संतीश अनेजा और विमला अनेजा। इसी गीत को पसंद किया है उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान ने। वडिंग खेड़ा पंजाब से है मिट्टू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। डेर पाटन गुजरात से है धीरज बी रवारी। भोपालगढ़ राजस्थान से है धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार। रायगढ़ से है पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह। उज्जैन से है वीनत मुणत, नेहा, दीपक, मयंक और इनके परिवार के सदस्य। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से है रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान। बाड़मेर से इस गीत को पसंद किया है बबलेश पवार, डैनी और मनीष पवार ने। बलिया से है ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी राय। आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके मीत ये गीत कार्यक्रम संपन्न करने की राखी को दे आ गया। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपके मीत ये गीत कार्यक्रम FM बैंड 101.2 MHz पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्र लोग। आपको बता दें कि भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था। बिधान चंद्र रॉय की गिनती देश के महान चिकित्सकों में की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि विश्व भर में चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है, इसलिए हम भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर डॉक्टर को आज सलामी देते हैं और इस विशेष दिन यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे की उन सभी को सम्मान के साथ बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत दिल का रिश्ता। इस फिल्म से अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के स्वरों में समीर के बोल, नदीम श्रवण की बनाई धुन।

सुनवा रहे हैं परदेसी बाबू। इस फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। सुधाकर शर्मा ने इस गीत की रचना की है और तर्ज बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अब आपको सुनवाते हैं समीर का लिखा ये गीत। अलका याग्निक अभिजीत की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है जुदाई।

अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश, अलका याग्निक का गाया गीत, समीर की रचना, हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म का नाम जूली।

जूली फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक से अब दीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया को आज्ञा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुनते रहिए आगे के कार्यक्रम विविध भारती के संग।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी।

16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद्ध गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

0: तो टल गया। तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। अब जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

चिट्ठी। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बड़वानी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं मानसून और प्रशासनिक तैयारियों की। पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस वर्ष जिले में जून माह में औसतन 743.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश की शुरुआत होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नगरपालिका परिषद बड़वानी द्वारा मानसून के दौरान शहर में संभावित जल भराव, बाढ़ या अतिवृष्टि जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। नगरवासियों को सूचित किया गया है कि बारिश में यदि शहर के किसी

क्षेत्र में जलभराव या अन्य कोई समस्या होती है तो नागरिक सतर्कता बरतें और तत्काल राहत व बचाव दल से संपर्क करें। अब बात करते हैं जन स्वास्थ्य की, जिसके तहत बड़वानी में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। अभियान में जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के कुल 2,61,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। वहीं मृदा परीक्षण और कृषि विकास के क्षेत्र में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जिले को इस वर्ष 7,718 मिट्टी परीक्षण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले अभी तक 7,178 मिट्टी नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब बात नशामुक्ति और सामाजिक जागरूकता की, जिसके तहत पिछले दिनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी द्वारा नशा मुक्ति सप्ताह के दौरान गांवों में जाकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक का मंचन कर युवाओं और समुदाय को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक भी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान 24 मार्च से जिले भर में चलाया जा रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय जेल बड़वानी में 10 दिवसीय जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रतिदिन 100 कैदियों की टीबी की स्क्रीनिंग की। अब बात आपदा प्रबंधन और युवा शक्ति की। पिछले दिनों 7 दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के तीसरे सत्र का समापन हुआ। इस सत्र के दौरान जिला आपदा प्रबंधन के आदेश से बाढ़ बचाव व सिंहस्थ कुंभ के लिए 231 युवाओं को संभागी सेनानी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया गया। अब बात करते हैं खेल जगत और बड़वानी के गौरव की। हॉकी इंडिया द्वारा ओमान में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए अंडर 18 महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई है, जिसमें बड़वानी शहर की स्नेहा दावड़े को पुनः भारतीय टीम में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं व्यापार और अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमिता की, जिसके तहत पिछले दिनों दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड नेशनल SC/ST हब MSME मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में सेंधवा में SC/ST उद्यमिता जागरूकता एवं स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं सिकल सेल नियंत्रण की, जिसके तहत पिछले दिनों विश्व सिकल सेल दिवस पर आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा एड ऑन थेरेपी के रूप में सिकल सेल से प्रभावित 201 रोगियों को आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण घर घर जाकर किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर बात करें तो पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम रामकुलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, कलेक्टर जयति सिंह, SP पदम विलोचन शुक्ल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, छात्र व नागरिक उपस्थित थे। वहीं पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में पिछले दिनों दुग्ध उत्पादकों की जागरूकता कार्यशाला का आयोजन जिले में किया गया। कार्यशाला के दौरान उपसंचालक डॉ. दिनेश पटेल ने पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, संतुलित आहार बनाने की विधि और दुग्ध उत्पादन के लाभ तथा साइलेज की ई मार्केटिंग व गोरस एप्लीकेशन की जानकारी प्रदान की। बड़वानी जिले की चिट्ठी में अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता की। साइबर अपराधों के बढ़ते ग्राफ पर अंकुश लगाने, आमजनों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सजग करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से पिछले दिनों जिले में 15 दिवसीय विशेष साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। और अंत में बात जल संरक्षण और जलगंगा संवर्धन अभियान की, जिसके तहत बड़वानी जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन सहित विभिन्न कार्यों को संपादित किया गया। वहीं कल यानी 30 जून को जलगंगा संवर्धन अभियान के जिला स्तरीय समापन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। जिले में कुल 5,666 विकास कार्यों को पूरा किया गया है, जिसके चलते जिला प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। तो श्रोताओं, ये थी बड़वानी जिले की चिट्ठी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया का था और वाचक थे अभिषेक कटियार।
1: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब बहने सुने कार्यक्रम नारी जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी जगत में। सखियों, माह जुलाई का पहला बुधवार, पहला दिन, सभी बहनें स्वीकार करें हमारा प्यार।

नमस्कार सखियों, आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी मोना दफ्तरी। सखियों, आपसे बात करते करते लगातार यह विचार दिमाग में आ रहा है कि जुलाई माह आ गया, वर्ष 2026 का आधा वर्ष कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अभी तो लगा था कि बस वर्ष की शुरुआत हुई है और 6 माह गुजर गए। सखियों, वक्त तो वक्त है, उम्र पल पल क्षण क्षण बढ़ रही है, फिर बढ़ती उम्र हो चाहे कोई भी उम्र, हमें स्वास्थ्य जागरूकता तो रखनी ही होती है। और ऐसे में हमारी लगातार जन्म से लेके अंत समय तक हमारी मदद करते हैं हमारे चिकित्सक, और सामान्य जीवन जीने के लिए हमें वह व्यवस्था देते हैं जो हमें अति आवश्यक है। सखियों, स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण, बलिदान और 2400 घंटे सेवा की सराहना के संदर्भ में आज का दिन यानी 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम सभी यह जानते हैं। और सखियों, बहुत ही चुनौती भरा एक ऐसा विषय है जो युवा चिकित्सक जब चुनते हैं तो परिवार वाले भी कहीं ना कहीं टेंशन में आ ही जाते हैं कि अब इनके पास हमारे लिए समय नहीं रहेगा। मुखौटे के पीछे चिकित्सकों का उपचार कौन करता है? यानी सखियों, हम बात कर रहे हैं इस वर्ष की थीम की कि पर्दे के पीछे इलाज करने वालों का इलाज आखिर कौन करता है। कितना संवेदनशील करने वाला वाक्य है ना सखियों, क्योंकि जो सबका इलाज करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, उनके पास जब परिवार के दूरी, परिवार से मिलने का समय की कमी, कार्य की अधिकता, लगातार ड्यूटी, आपदा और विशेष परिस्थितियों में सजगता, हर पेशेंट का जीवन उनके लिए अनमोल है, डॉक्टर के लिए एक चुनौती होता है। वहीं अपने परिवार, स्वास्थ्य और समाज को छोड़कर चिकित्सक की पहली प्राथमिकता होता है उसका पेशेंट। और मरीज के चिकित्सक के साथ एक जो अनमोल डोर बंधी हुई होती है, वह एक पेशेंट को डॉक्टर से भगवान की तरह जोड़ देती है और लगता है कि बस यही सुरक्षा घेरा है जो मुझे सुरक्षित कर पाएगा। सखियों, एक ऐसा विषय जिसका होना है तो हम हैं, नहीं है तो पता ही नहीं हम लोगों के साथ क्या हो। अब सखियों, हम भी समझे, हमेशा हम जो शिकायत करते रहते हैं कि डॉक्टर ने ऐसी दवा लिख दी, डॉक्टर ने समय नहीं दिया, तो वह भी आखिर इंसान है। और फिर सखियों, हम कार्यक्रम नारी जगत में आपके साथ हैं, और यहाँ पर हम अगर किसी महिला डॉक्टर के हित की बात करें तो वह भी हमारे ही बीच में से निकली कोई हमारी सखी है। इसलिए जहाँ पर हमें लगता है कि हमें चिकित्सीय व्यक्तित्व को अपने ऊपर हावी न होने देकर एक महिला की सुरक्षा, साथ, समय पर सहयोग और स्वभाव में सौहार्दपूर्ण और पारिवारिक माहौल अगर हम रखें, जब भी आवश्यकता पड़े उनके लिए भी हम खड़े रहें, तभी हमारा यह कहना कि आज का दिन हमने मनाया, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया, हमारा सार्थक होगा। तो सखियों, अपनी बातचीत को अब देती हूँ कुछ देर का विराम और सुनते हैं डॉक्टर भावना अत्रिवाल से कुछ शब्द।

मैं डॉक्टर भावना त्रिवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पर सभी डॉक्टरों के प्रति मैं सम्मान, कृतज्ञता और आभार व्यक्त करती हूँ। चिकित्सा मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। डॉक्टर बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य जागरूकता और समाज के कल्याण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य 2047 तक भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक उन्नत राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। हैप्पी डॉक्टर्स डे। जय हिंद।

सखियों, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अलावा राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी है, जिसे हम सीए दिवस के रूप में भी संक्षिप्त में कहते हैं। सखियों, ये लेखांकन पेशे

सम्मानित करने का दिन है। पेशेवर मान्यता, सामुदायिक सहभागिता को हम समझ बना पा रहे हैं और आज के समय में हमने इसे स्वीकार भी लिया है। सखियों, कोई भी कार्य सरल नहीं होता है और कोई भी कार्य कठिन भी नहीं होता है। बस हम खुद सम्मान करें कर्म का अपने और औरों के कर्मों को भी सकारात्मक रूप से सहभागी बने। आज किसी भी प्रोजेक्ट की बात की जाए सखियों, तो सीए की मुहर विश्वसनीयता का प्रमाण है और उसके बाद ही कोई प्रोजेक्ट सफल होता है या यूं कहे कि पास किया जाता है। बहुत ही मेहनत से, लगन से यहाँ तक का सफर सीए बनने में बच्चे करते हैं तय, तब हम उनकी सेवाएं प्राप्त कर पाते हैं और आज हम यह दिवस मना रहे हैं। आज के लिए हम दो शब्द आशावादी विचारधारा के साथ इनके लिए यह कहें कि अपने आसपास कोई सीए या इस पेशे से जुड़ा व्यक्ति या परिवार का कोई सदस्य है तो उसे दो शब्द सम्मान के जरूर कहें। सखियों, प्रोत्साहन सम्मान जीवन को आनंदमय तो करता ही है, साथ ही कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है, तो फिर अच्छे कार्य में देरी क्यों भला। दो शब्द हमारी तरफ से भी इनके लिए। और सखियों, अब हम जानते हैं कि आपको इंतजार है कि दिवस के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से बातचीत कर ली, अब हमारा आज का जो कार्यक्रम है इसका आकर्षण क्या है। तो सखियों, आज की हमारा जो आकर्षण है वह है भेंटवार्ता वन महोत्सव। आप जैसा कि जानती ही हैं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। और विस्तार से जानकारी लेकर हमारे साथ हैं मीता कौर साहनी, आप कार्यवाहक वनपाल खंडवा से हैं और विस्तार से अपने अनुभव के साथ हमसे जानकारी इस महोत्सव के बारे में साझा की है।

0: जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज माह का पहला दिन 1 जुलाई, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक जो सप्ताह मनाया जाता है, हमारी धरती माता को प्रणाम करने का, वन देवी को प्रणाम करने का है। फिर हमने सोचा कि क्यों न वन महोत्सव की शुरुआत हम रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी कार्यक्रम नारी जगत में करें, और इसी संदर्भ में हमने आमंत्रित किया है। हमारे साथ है मैडम, अपना पूर्ण परिचय देंगी और आकाशवाणी परिवार का, श्रोताओं का अभिवादन साथ ही स्वीकार करेंगी। मैडम, जानना चाहेंगे आपका परिचय।
1: नमस्कार, मैं मीता कौर साहनी, कार्यवाहक वनपाल, वन परिक्षेत्र खंडवा में पदस्थ हूँ। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने वन महोत्सव जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने श्रोताओं तक जानकारी पहुंचाने का मुझे अवसर प्रदान किया।
0: जी मैडम, परिचय के लिए धन्यवाद, और हमें बड़ी ही खुशी हो रही है, क्योंकि हम आपको बता दें कि हमारा जो यह भेंट वार्ता है, यह कार्यक्रम नारी जगत में प्रसारित की जाएगी। और जब फॉरेस्ट की या पुलिस विभाग की बात की जाती है, तो पुलिस विभाग में तो अधिकतर बहनें दिख जाती हैं, लेकिन जब फॉरेस्ट की बात की जाती है, तो यदा कदा ही हमें बहनों का परिचय होता है, लेकिन आप हमारे साथ सहभागी हैं, तो संपूर्ण नारी शक्ति का आप प्रतिनिधित्व कर रही, तो पहले तो आपको बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी
0: और परिचय के बाद हम सिलसिला शुरू करते हैं कि आखिर वन महोत्सव क्या है, क्योंकि हमारे कुछ श्रोता इस बात से अनभिज्ञ हैं।
1: देखिए, वन महोत्सव के बारे में तो आप सभी अच्छे से वाकिफ है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी। वन महोत्सव भारत में प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान है। इसकी शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री श्री के एन मुंशी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं था, बल्कि लोगों में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। यह अभियान हमें हरियाली बढ़ाने, जल संरक्षण, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य के लिए प्रेरित करता है।
0: जी मैम, यहाँ पर वन महोत्सव के बारे में तो हमने समझा, और वन महोत्सव क्या है इस समझ को बनाने के बाद, अब जो वन महोत्सव में जो साप्ताहिक गतिविधियों का संचालन होता है, उसकी भी कोई रूपरेखा तैयार की गई होगी, तो हमारे जिले में किस तरह से गतिविधियाँ जो है वह आगे बढ़ेंगी।
1: हाँ जी, वन विभाग द्वारा ये अभियान चलाया जाता है, इसका मैं आपको बताना चाहूंगी। वन महोत्सव के दौरान पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें वृक्षारोपण अभियान हो गया, पौधों का वितरण हो गया, स्कूलों और महाविद्यालयों में जागरूक

0: जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है, रैलियां निकाली जाती है, निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं और ग्राम सभाएं तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जन जागरूकता कार्यक्रम शामिल होते हैं। स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सहभागिता से यह अभियान जन आंदोलन का रूप लेता है।
1: जी मैडम, यानी सिर्फ विभाग की ही नहीं, हर व्यक्ति की, देश के नागरिक की यहाँ पर जो भूमिका है वह अपनी अपनी जगह है, लेकिन विशेष रूप से सबको जो एकत्र करने का काम विभाग करता है, तो इस तरह की जो विभाग की अपनी भूमिका है, इसके निर्वाह में क्योंकि समय कम होता है तो पहले से ही प्रचार प्रसार को शुरू कर दिया गया होता है, कैसे होती है इसकी भूमिका तैयार?
0: जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वन विभाग की भूमिका जो रहती है सिर्फ केवल पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं होती। विभाग पौधों की गुणवत्ता, उपयुक्त प्रजातियों का चयन, पौधों का वितरण, रोपण की तकनीक जानकारी तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण और देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।
1: जी, यहाँ पर जन सहयोग कैसे, मतलब इस कार्यक्रम को जो भेंटवार्ता के माध्यम से सुन रहे हैं वह भी, और जो पहले से इस महोत्सव के बारे में जानते हैं, वह कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो सकते हैं?
0: देखिए, वन संरक्षण केवल सरकार या वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। हर व्यक्ति अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या किसी विशेष अवसर पर एक पौधा लगाकर उसकी नियमित देखभाल करने का संकल्प ले सकता है। विद्यालय, सामाजिक संस्थाएं, ग्राम पंचायतें और नागरिक मिलकर पौधों की सुरक्षा कर सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, जल संरक्षण को बढ़ावा दें। यदि लगाया गया पौधा जीवित रहता है तभी वृक्षारोपण का सफल उद्देश्य माना जाएगा।
1: जी मैम, यहाँ पर तो महती भूमिका है, और कोरोना काल के बाद से वर्तमान में जो जिस तरह से गर्मी और एक तरह मौसम परिवर्तन और जो आपदाएं आ रही, इसको देखकर लगभग हर व्यक्ति जागरूक है और प्रकृति को सहेजना चाहता है, बस उन्हें माध्यम नहीं मिलता, लेकिन विचारों में ही वह चीजें चलती रहती है। लेकिन आज की हमारी जो भेंट वार्ता है ना, ये जो सुनेंगे, अगर उन्हें कहीं ऐसा लगता है कि वन महोत्सव के माध्यम से एक हमें तय सीमा में संकल्प मिल जाता है कि चलिए हम ये करते हैं, इस हर कार्यक्रम की, महोत्सव की कोई ना कोई थीम होती है मैम, तो ऐसे ही इस वर्ष की जो थीम है उसके बारे में हम आपसे आपके विचार साझा करना चाहेंगे।
0: देखिए, इस वर्ष जो वन महोत्सव का मुख्य संदेश है कि एक पेड़ माँ के नाम, यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मातृत्व के सम्मान का भी प्रतीक है। जिस प्रकार माँ हमें जीवन देती है उसी प्रकार पेड़ भी हमें प्राणवायु, जल, भोजन और सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करते हैं। जब हम अपनी माँ की सम्मान में एक पौधा लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो हम प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व तो निभाते हैं। इसलिए सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए।
1: और चूंकि आप हमारे कार्यक्रम नारी जगत के माध्यम से श्रोता बहनों के बीच में हैं, तो अब चलते चलते कोई ऐसा मैसेज जो हमारी बहनों के बीच में और जो श्रोता साथ ही कार्यक्रम सुन रहे उनके बीच में जाना जरूरी हो मैम।
0: जी बिल्कुल, मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करना चाहूंगी कि इस वन महोत्सव में केवल पौधा लगाने तक ही सीमित न रहें, बल्कि उसके संरक्षण का भी संकल्प लें। याद रखिए, आज लगाया गया एक पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का आधार बन सकता है। आइए हम सब मिलकर प्रकृति का सम्मान करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, उन्हें जीवित रखें और एक हरित, स्वच्छ और समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाएं। और साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, पौधा लगाना, पेड़ लगाना ही एक औपचारिकता निभाना नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी मैं कि हम अपने हमेशा देखा हुआ है कि हम किसी भी पौधों को यदि कैरी करना है, आपने देखा होगा जब खेत रहते हैं, खेत खलियान जहाँ पर फसलें लगती है वो पूरा खुला एरिया रहता है, वहां पर किसी प्रकार की कोई बागड़ नहीं की जाती, कोई फेंसिंग नहीं की जाती है, पर वहां पर फसलें जो रहती है वो खड़ी रहती है। उसी प्रकार मैं आपको ये बताना चाहती हूँ

0: कि मोटिवेशन जरूरी है, उस फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई जाता नहीं है, क्योंकि सबको डर बना रहता है कि नहीं हमें फसलें खराब होगी, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, है ना। इसी प्रकार मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना लोग जागरूक रहेंगे कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, ये हमारा दायित्व है, तभी जाके ये चीज सक्सेस हो पाएगी। अभी सबको पता है पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है, ओजोन परत में छिद्र सीएफसी के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण भी इतना नुकसान प्रकृति को हो रहा है। तो प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए जब तक पेड़ों की पूरी मात्रा नहीं रहेगी, और सबसे, और आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि बेसिकली हम लोग जो है पीपल का पेड़ लगा सकते हैं, अपन वो नाइट में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है, तुलसी हर घर में लगती है जो मेडिसिनल प्लांट का काम करता है। ऐसे हमारा फॉरेस्ट में वन संजीवनी औषधि केंद्र है, वहां पर तुलसी सिरप इस टाइप की ये जो मेडिसिन है जो एलोपैथी से हटकर आयुर्वेदिक की तरफ आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे उत्पाद मिलेंगे आप लोगों को।
1: जी मैम, अगर कोई व्यक्ति ये पौधारोपण से जुड़ना चाहता है तो क्या उसे कोई शुल्क के साथ में पौधा वन विभाग से प्राप्त होगा, या वह सेवा के रूप में लेकर संकल्प के साथ उस पौधे को पौधारोपण कर सकता है?
0: देखिए, दोनों ही प्रकार से वन विभाग द्वारा दिए जाते हैं। यदि उन्हें अधिक मात्रा में लगाने हैं कहीं पर पौधे, तो हमारी अनुसंधान नर्सरी है, वहां से वो पौधे शुल्क के साथ लेकर प्राप्त करके लगा सकते हैं। और यदि उन्हें लगाने हैं इस टाइप से प्लांट्स की कहीं पर वृक्षारोपण करना है, तो यहाँ से फॉरेस्ट विभाग की तरफ से प्लांट दिए भी जाते हैं, उन्हें जितने प्लांट चाहिए उसकी वो मांग रख सकते हैं, उन्हें प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं प्लांट्स।
1: जी मैम, धन्यवाद मैम, आपने इतने व्यस्ततम समय में से महोत्सव की तैयारी करते हुए हमारे आकाशवाणी परिवार के लिए, या हम यूँ कहें अपने लिए समय निकाला। आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: सखियों, 1 जुलाई से 7 जुलाई वन महोत्सव के संदर्भ में हमने अभी जानकारी प्राप्त की मीता कौर साहनी से, और उम्मीद है सखियों कि आपको इस जानकारी से लाभ मिला होगा और आप भी पौधारोपण कर अपने जीवन को वन महोत्सव को सार्थक करेंगी। और सखियों, अब सुनते हैं यह गीत।

सखियों, इस गीत के बाद हम अपनी बातचीत का क्रम शुरू करते हैं। वर्षा ऋतु और महिला स्वास्थ्य। सखियों, मौसम कोई भी हो, हमने अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना आवश्यक है। फिर वर्षा ऋतु, हम बहनों को तो इस मौसम में विशेष एहतियात रखना ही है, क्योंकि हम पर परिवार की भी तो जिम्मेदारी है। लंबे बालों की बात की जाए या फिर शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ घर के सभी कक्षों की रसोई प्रबंधन की। सबसे पहले खान पान पर विशेष ध्यान दें। ताज़ा सब्जी, पत्तेदार सब्जियों को साफ स्वच्छ उपयोग और साथ ही पीने के पानी की स्वच्छता का विशेष हमें ध्यान रखना है और रखवाना भी है। सखियों, इस मौसम में सबसे ज़्यादा खतरा होता है फंगस का, यानी संक्रमण का। प्रारंभिक तौर पर अगर देखा जाए तो खुजली, एलर्जी, दाने चकते दिखते हैं, तो उसे लापरवाही न करें, सतर्क रहें, इलाज करवाएं या फिर घरेलू उपाय अपनाकर प्रारंभिक रूप से तो देखभाल शुरू करें। और यहाँ पर जब हम बहनों की बात करते हैं और स्वच्छता की बात आती है, तो फिर माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को हम कैसे भूल सकते हैं। गीले कपड़े, गीले बाल का उपयोग न करें और साथ ही समय समय पर सैनिटरी पैड भी बदलें। अब सखियों, संक्रमण पानी का हो, भोजन का, त्वचा का, यहाँ पर स्वच्छता ही विशेष रूप से हमारे लिए प्रबंधन का काम करती है। और सखियों, अब आज की रेसिपी। आज हम आपके लिए मौसम के अनुरूप ही रेसिपी लाए हैं, मूंग उड़द के चटपटे चीले। बारिश का मौसम, सभी का मन करता है पौष्टिक चटपटा खाना। अब हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि खड़े हरे मूंग 90% हो। जितनी भी मात्रा में आपको जितने लोगों के लिए बनाना है उस आधार पर हम यह बात कर रहे हैं। और जो मूंग आपने लिए उसके 10% हमें उड़द दाल लेनी है, अलग अलग रात में गला दें। अब दोनों को अलग अलग पीसना है, ध्यान रहे अलग अलग पीसना है, फिर एक बार मिलाकर साथ में मिक्सी में चला लें। अब इसमें हरी चटनी, अदरक कद्दूकस किया हुआ, सूखा मीठा नीम पाउडर हो तो वो, नमक, हींग, पिसा सौंफ दरदरा और कोई भी मौसमी भाजी डालकर गला दें। 2-3 घंटे तक रहने दें और फिर चटपटे जो चीले बनाएं।

इस गीत के साथ ही सखियों अब समय हो रहा है आज के नारी जगत कार्यक्रम को संपन्न करने का। आज आपके साथ थी आपकी रेडियो सखी मोना दफ्तरी। अनुमति दे, नमस्कार।

अभी नारी जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया गया FM बैंड 101.2 MHz पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:40 हुए हैं। अब सुनिए सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत में आज के हमारे कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

हम जानते हैं, तभी तो मनोरंजन का खजाना लेकर आते हैं आपके लिए। सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई चंद्र।

0: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: और आकाशवाणी खंडवा से सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

फिल्म ताजमहल की ये कव्वाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, मन्ना डे और मीना कुमारी की आवाज़ों में। साहिल ध्यानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।

0: नशा एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे, ये गज़ल आप सुन रहे थे पिनाज मसानी की आवाज़ में। कतील शिफाई का कलाम था, पीलू जी मसानी की तर्ज थी।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विकी डोनर फिल्म से। आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का लिखा ये गीत था। रोचक कोहली आयुष्मान खुराना की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग।

0: आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल, रफ़ीक हुसैन और रफ़ीक जयपुरी की लिखी ये गज़ल थी, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की तर्ज थी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: पामेला सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे सईद राही का कलाम।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: विजु शाह का सर्वधिकिया ये गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर की रचना थी, आवाजें थीं पंकज उदास और साधना सरगम की। मोहरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
1: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने

0: योजना के लिए रखी है, इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: राहुल देव बर्मन की तर्ज थी मजरू सुल्तानपुरी की रचना, आपने सुनी मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म थी तीसरी मंजिल।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं

देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जा।

तारा शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा

आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरे का लिखा संगीत था सचिन देव बर्मन का, फिल्म तीन देवियां का गीत आपने सुना।

0: अय्यर के संगीत निर्देशन में कश्मीरी का लिखा ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: आनंद बख्शी का लिखा सूरज और चंदा फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमा।

0: मोम की गुड़िया फिल्म का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आनंद बख्शी के की आवाजों में। आनंद बख्शी की बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा तुम चोर हो चोर हो चोर हो।
2: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा, बोलो क्या चुराया है?
1: मेरा दिल।
2: क्या?

इन जुल्फों में उलझ उलझ कर कई मुसाफिर भटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके, हो तेरा रंग है।

ले समझी अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके हट तेरा।

कुमार बारावंकी की रचना आपने सुनी, नौशाद का संगीत था, साज और आवाज फिल्म में यह आवाज थी मोहम्मद रफी की। अब यादों की महफिल, ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रोताओं कार्यक्रम सुरीला सफर में, क्योंकि ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है आपके रेडियो सेट पर। श्रोताओं, मौसम कोई भी हो, कहीं रिमझिम की फुहार है, कहीं सूरज की तपिश, ये आप बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे आजकल। तो मौसम कोई भी हो, हर पल आपके संग है विविध भारती, आपके रेडियो सेट पर है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बातें हैं और हम हैं, आप हैं, साथ साथ कार्यक्रम है सुरीला सफर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज की इबारत को लेकर अपनी बातें लिखी हैं, और कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो नहीं लिखे हैं। तो बस आप अपनी जो है बातें लिखिए, और आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai, और हमारे नए श्रोता भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएँ, अपने कमेंट्स। और अब आज की इबारत आपके लिए पढ़ देते हैं। क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? क्या सचमुच पलकों के पीछे छुपकर कोई कुछ कह जाता है? क्या काजल सचमुच नैनों में बसता है? हो ना हो, लेकिन ये गलत फहमियों का जहां भी कुछ कम खूबसूरत तो नहीं। रेत का समंदर जरा सोच कर देखो, अगर ये दिल ना होता, जज्बातों का रंग महल, जितने दरवाजे उतने पहलू, उतने अरमा उतनी ही ताबीरें। इश्क के असर को छुपाए कि मोहब्बत क्या सचमुच लाखों में एक हसीन होती है, या फिर शायद कस्तूरी की तरह जो चोरी चोरी चुपके चुपके शाही पान में खुशबू बिखेर जाती है। न रखो गलत फहमियाँ, न पूछो भला

शबनम मुस्कुराती कब है, रात कब जागती है, देखो कि दिल टूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, खुशफहमियों का जहां कुछ रहने भी दें, जब सुलझ जाए गलत फहमियों की रेशमी डोर, बदगुमानी के बादल जब हट जाएं, जब मोहब्बत के दीप जलें, तुम आ जाना। अजब फहमी गलत फहमी के दरमियान हूँ इबादत, मैं तुझे लिखती हूँ कि तू मुझे लिखता है। श्रोताओं, आप समझ ही गए हैं कि आज दरमियाँ होती गलत फहमियों की बातें हम करने जा रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी जो बातें हैं वो इसको लेकर लिखी भी हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि क्या आपके जीवन में कभी गलत फहमियों का दौर आया, और आपने इस दौर को किस तरह, किस खूबसूरती से निभाया, ये आप हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि कई बार गलत फहमियाँ जो होती हैं वो होती हैं और बड़े मनमुटाव भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार गलत फहमियों के बावजूद भी बड़ा प्यार उमड़ता है। हमारे सभी श्रोताओं का फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

अभिनेत्री नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था द ट्रेन फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, आर डी बर्मन की तर्ज थी और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हम खुशफहमी और गलत फहमी के माया जाल में जकड़े हुए हैं, हमें लगता है जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम तारीफ के काबिल हैं, जब भ्रम टूटता है तो गलत फहमी का सत्य स्वीकारना पड़ता है। और इन्होंने गीत जो चुना है जब दीप चले आना, तो देखते हैं कि कौन कौन से गीत आज के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वैसे आज की फिल्में भी आप जरा ध्यान दीजिए श्रोताओं, ये फिल्में भी कुछ इसी तरह की हैं, द ट्रेन और आगे भी जो फिल्में आप जिनके गीत आप सुनेंगे उन्हें आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने वो फिल्में देखी हैं तो उनके बारे में आप बता भी सकते हैं कि उनमें क्या गलत फहमियाँ थीं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि गलत फहमियाँ भ्रम भ्रांति यानी जीवन का एक छुपा हुआ राज, जो प्यार मोहब्बत में बहुत खूबसूरत लगता है, जो रेत का समंदर यानी अधूरी चाहतें पूरी कर देता है, सुहाने सपने सजाता है, मन की उम्मीदें बढ़ाता है, कल्पना रम्य सुख देता है, प्यार का कोमल मोहक आनंद लुटाकर खुश कर देता है। गलत फहमी को खुश फहमी बना देने वाली आज की सकारात्मक इबारत है। और वो चांद मुस्कुराया और पलकों के पीछे क्या तूने कह डाला मुझसे भला काजल तेरा, रंग महल के दस्तरवाजे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत का मुख्य विषय भ्रम और यथार्थ तथा प्रेम की अनुभूति है, यहाँ तार्किक सत्य के बजाय खुश फहमियों के रोमांटिक संसार की को तरजीह दिया गया है, क्योंकि यही जीवन और प्रेम को जीने का हौसला देते हैं। भाषा बेहद काव्यात्मक, संवेदात्मक और उर्दू हिंदी के खूबसूरत मिश्रण जैसे जज्बात, ताबीरें, बदगुमानी इबारत ऐसे सजी है, इसमें गद्य होते हुए भी एक लय और संगीत है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज कहीं जाना है लेकिन गीत तो सुनती रहूंगी, एक गीत जिसका मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपकी इबारत में ये शब्द रंग महल के दस्तरवाजे। तो देखते हैं, और पलकों के पीछे भी इन्होंने चुना है, तो देखते हैं कौन कौन से गीत आज होते हैं शामिल। और एक और श्रोता ने चांद तू जब भी मुस्कुराता है, पलकों के पीछे से कचरारे कचरारे, ये दिल ना होता बेचारा, रंग महल। और एक और श्रोता जिन्होंने कुछ शब्द इसमें से चुने हैं, ये शब्द हैं कि चांद पलकों के पीछे, रंग महल, हसीना, चोरी चोरी चुपके चुपके, शबनम, रेशम की डोर, दीप हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि नैनों में दर्पण है, चांद आ ही भरेगा पलकों के पीछे से, और लाखों हैं निगाह में, इन्होंने भी बहुत सारे गीतों को पसंद किया है। तो अगला गीत आपको सुनवा देते हैं और आपको बताना है कि ये जो फिल्म है श्रोताओं, इसमें मुख्य अभिनेत्री कौन है। और कई बार आपको भी बहुत सारी गलत फहमियाँ हो जाती होंगी, कभी दो अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनके कपड़ों को लेकर, कभी कोई गिफ्ट अदल बदल जाता है, कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं, या फिर बहुत बड़ी गलत फहमियाँ देखने को मिलती हैं जब हम रेलवे के सफ़र पर होते हैं। तो ऐसी कुछ यादें अगर आपकी हैं तो आप हमसे ज़रूर साझा करें।

देवानंद साहब की एक बड़ी अजीब अदा इस गीत में नजर आती है श्रोताओं, उनके हाथ में एक चीज है, क्या आप ने ध्यान दिया है तो आप हमें जरूर लिखकर बताएं। और एक अभिनेत्री जो नजर आ रही हैं वो तो तनुजा हैं, दूसरी अभिनेत्री के बारे में हमने आपसे पूछा है तो आप हमें जल्दी से इसका जवाब भेज दें। और वैसे जो सवाल हमने पूछे हैं उसके बहुत सारे जवाब भी हमारे पास आए हैं, बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं अपने सभी श्रोताओं का हमारे गद्यांश को पढ़ने के लिए और उस पर कमेंट्स करने के लिए, अपने गीत और अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन दर्शन की बहुत ही गहरी बात को एक रूपक के रूप में दर्शाया गया है। जिंदगी कोई गणित या सीधा समीकरण नहीं बल्कि भावनाओं, उम्मीदों और एहसासों से बुना हुआ एक ऐसा कैनवास है जहाँ खूबसूरत गलत फहमियाँ ही इसके रंग को जीवंत बनाती हैं। जीवन की कला इन्हीं कोमल भावनाओं और गलत फहमियों को संजोने में है। कभी कभी किसी बात को सकारात्मक रूप से मान लेना भले ही वो पूरी तरह से सच न हो, जीवन को जीने योग्य और खूबसूरत बना देता है। गलत फहमियाँ अक्सर वे उम्मीदें और सपने होते हैं। तो एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती का सुरीला सफ़र, ये एक सफ़र कल कौन सी इबारत आएगी, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफ़र भी गलत फहमी और खुश फहमी के दो पहियों के बीच पिसता फंसता चला जाता है, चलता रहता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां विचारों, शब्दों या इरादे का गलत अर्थ गठन होता रहता है, कभी धूप तो कभी छाँव। और इन्होंने एक और हमारी एक और श्रोता लिखती है कि

जाने कहाँ खो गया, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, हुस्न से चांद भी शर्माया है। और कुछ गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आदमी की जिंदगी खुशफहमी और गलतफहमी से भरी हुई है, मुझे खुशफहमी रहती है कि मेरी कमेंट अच्छी है और आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, आप कमेंट नहीं पढ़ती, तब महसूस होता है कि मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में था। तो ये भी गलतफहमी हो सकती है आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मैंने ऐसा मुझे याद पड़ता है मैंने कई बार आपकी कमेंट पढ़ी है, तो हो सकता है कि यहाँ भी कुछ गलतफहमी हो। बहरहाल जो गलतफहमियाँ हैं उन्हें मिटा देना ही ज़्यादा अच्छा होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत आज की इबारत की पहली लाइन, क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है, आपका जवाब इन गानों में मिल गया। जी हाँ, ये चांद सा रोशन चेहरा, शमी कपूर का रोमांस और चांद, क्या बात है। इन्होंने अपनी तरह से गीतों को चुना है। एक और श्रोता लिखती हैं कि अजीब कश्मकश है ये यकीन और गुमान के बीच, मैं खुद को तुझ में ढूंढती हूँ या तो मुझ में ठहर जाता है, अजब बंदिश अजब आज़ादी के दरमियाँ हूँ, किताब मैं तुझे पढ़ती हूँ कि तू मुझे पढ़ता है, क्या बात है। और इसी तरह का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओ, शशि कपूर इस फिल्म में है और क्या रोल है उनका इस फिल्म में, क्या आप बता सकते हैं?

शशि कपूर एक इंजीनियर के किरदार में होते हैं श्रोताओं, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत था। इस फिल्म में बड़ी अजब सी गलत फहमी थी जो चेहरे को लेकर थी, और अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। वल्लभ भाई पटेल का लिखा ये गीत था, लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाज़ें थीं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो चांद खिला, वो तारे हंसे, आँखों में काजल, नैनों में बदरा छाए, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की डोर को हकीकत से ज्यादा गलत फहमियां कमजोर करती हैं। सच्चाई और बातचीत के अभाव में पनपी ये अजब फहमियां करीबियों में दूरियां पैदा करती हैं। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला, यूं ही वरना कहना कुछ था वो कुछ समझे, और मुझे कुछ और कहना था। जी हाँ, लेकिन अगर ये गलत फहमियां हो जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं कि मोबाइल पर बात कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से ही कुछ मना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके बीच कोई अनबन हो जाए तो आप एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं, ये गलत फहमियाँ किस तरह से दूर करते हैं, क्योंकि ये भी समझदारी की ही बात होती है। श्रोताओं, गलत फहमियों में कुछ रखा नहीं है, जो खुश फहमियाँ हैं वो और गलत फहमियाँ, इन दोनों में बड़ा बारीक सा रेशम के सा अंतर होता है, इसे पहचानने की ज़रूरत है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने, एक जब दीप जले आना जब शाम ढले जाना, दो दिल के टुकड़े टुकड़े करके, और इन्होंने भी अपनी जो एक लिस्ट है वो बनाई है। एक और श्रोता लिखती हैं, गलत फहमियाँ रिश्तों में दूरियाँ बढ़ाती हैं, जबकि खुश फहमियाँ मुस्कुराने का एक बहाना बन जाती हैं। जब मन की धुंध छट जाती है, बदगुमानी के बादल हट जाते हैं और विश्वास के दीप जल उठते हैं, तब मोहब्बत अपने असली रंग में खिलती है। लेकिन हर गलत फहमी बुरी नहीं होती, कुछ खुश फहमियाँ रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, विरेत के समंदर में दूर दिखाई देती हैं, उस नमी की तरह जो भले ही हाथ में ना आए लेकिन सफर को उम्मीद और दिल को मुस्कान दे जाती है। जब रेत की बात है श्रोताओ, तो रेत में अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नदी है या समंदर है, इसे क्या कहते हैं? अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। और एक और बात है कि कस्तूरी मृग जो है उसे हमेशा ये गलत फहमी होती है कि कस्तूरी कहीं और है, इस बारे में आप क्या जानते हैं तो हमें जरूर बताएं। इस फिल्म में एक्ट्रेस के दो रोल को आपको बताना है नाम।

दो जुड़वा लड़कियों को लेकर जो ये फिल्म बनी थी, इसमें गजब का सस्पेंस था। श्रोताओं, मेरा साया फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज़ में। राजा मेहदी अली खां के बोलते मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कि दो नाम कौन से थे अभिनेत्री साधना के, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा है वो भी ज़रूर हमें बताएं। और गीता और निशा, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? श्रोताओ, अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि रेल के सफ़र के दौरान बड़ी सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की हमारी जो इबारत है, मैं हमको तो पता भी नहीं चला कि हम चाँद से रेत पर आ गए और चाँद से रेत पर आ गए और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हो गए। इस साजिश में कब फंसे पता भी नहीं चला। एक और श्रोता लिखते हैं कि ज्वेलथीफ का जो गीत हमने आपको सुनाया, उसमें मछली पकड़ने का कांटा और साथ में उसमें फंसी मछली है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था कि कौन है उसमें मुख्य अभिनेत्री, तो वैजयंती माला थी। एक और श्रोता ने लिखा है, अगर दिल से एहसास, उम्मीदें और ये प्यारे भ्रम निकाल दिए जाएं तो जीवन एक अंतहीन रेत के समंदर जैसा बंजर हो जाएगा, जहां फैलाव तो बहुत होगा पर सुकून की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही इस रसीन जिंदगी में रस घोलती हैं, जैसे कस्तूरी अपनी खामोश खुशबू से पूरे माहौल को महका देती है, ठीक वैसे ही जज्बात इंसानी रिश्तों को जो हैं जिंदा रखते हैं। कभी कभी जिंदगी को मरुस्थल बनने से बचाने के लिए तर्कों को परे रखना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान दिल की गहराइयों से जुड़ता है तभी वो रिश्तों के असली रूप को जी पाता है और जीवन में प्रेम के दीप जलते हैं। क्या ही सुंदर बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं, इबारत के लिखने के दायित्व को सौंपने के क्रम में अग्रसर हो रही प्रस्तुत आज की इबारत मन के भेदों में निहित अंतर्द्वंद को भली भांति स्पष्ट कर रही हैं, और इस दृष्टिकोण से ही आज की ये इबारत स्वयं में ही इबादत करने योग्य है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिश अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां भी जरूरी हैं।

इस गीत में श्रोताओ और इस फिल्म में सांपों के बारे में बहुत कुछ है या सांप के बारे में बहुत कुछ है। वैसे रस्सी और सांप, इनमें तो बहुत गलतफहमियां होती हैं, क्या आपको हुई हैं?

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खुश फहमियाँ और गलत फहमियों में के बीच क्या क्या होता है, दो दिलों में कैसी कैसी शरारतें पैदा होती हैं, तरह तरह के गीतों का मजा लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमियाँ जिंदगी में अक्सर गलत फहमियाँ हो जाती हैं, कभी हम व्यर्थ की खुश फहमी पाले रहते हैं, परिणाम जब इसके विपरीत आते हैं तो पता चलता है।

एक और श्रोता लिखते हैं, कस्तूरी सुख है हिरण रूपी चैतन्य आत्मा में, कस्तूरी सुख है और नाभि यानी वर्तमान पर्याय में है। जी हाँ, ये तो है ही है, काव्यात्मक तरीके से आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि कस्तूरी मृग क्यों वन वन घूमता है। जी हाँ, वो तो कस्तूरी की सुगंध के पीछे घूमता है श्रोताओं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्तूरी है वो कहीं और है, लेकिन ये तो कोरा भ्रम होता है, वो तो उसकी नाभि में होती है। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कई दिनों से घर वाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ इन्होंने बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं कि कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ मूछों को लेकर संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं यही गलत फहमियाँ पैदा करती हैं, और कभी कभी ये जब खुश फहमियाँ बन जाती हैं तो कभी थोड़ा सा हम खुश भी हो लेते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि गलत फहमी पर मैं बताना चाहूँगा, मेरी धर्मपत्नी जुड़वा है, अपनी जुड़वा बहन से सिर्फ

है, लेकिन ये तो कोरा भ्रम होता है, वो तो उसकी नाभि में होती है। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कई दिनों से घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ इन्होंने बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं कि कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ मूछों को लेकर संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं यही गलत फहमियाँ पैदा करती हैं, और कभी कभी ये जब खुश फहमियाँ बन जाती हैं तो कभी थोड़ा सा हम खुश भी हो लेते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि गलत फहमी पर मैं बताना चाहूँगा, मेरी धर्मपत्नी जुड़वा हैं, अपनी जुड़वा बहन से सिर्फ 10 मिनट छोटी हैं, दोनों एक ही स्कूल में हैं और एक ही क्लास में पढ़ती थीं। धर्मपत्नी ने मुझे सगाई के बाद बताया कि उन्हें टीचर्स ने गलतफहमी से बचने के लिए कह रखा था कि स्कूल जब भी आएं तो साली साहिबा एक चोटी बनाएं और धर्मपत्नी पत्नी दो चोटी रखें। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे दोनों को पहचानने में गलतफहमी नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात है। और इस तरह से जुड़वा बच्चों में भी होता है श्रोताओं, तो जो एक गलतफहमियां जीवन में होती हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन हमें किस तरह से इससे निपटना है और कुछ एक तरीका तो गोलमाल फिल्म में जो अमोल पालेकर हैं उन्होंने भी बताया है। तो आप हमें बताएं कि ये दो नाम कौन से थे, और संजीव कुमार की एक फिल्म थी जो गलत फहमियों पर आधारित थी, जिसमें देवेंद्र वर्मा भी थे, मौसमी चटर्जी भी थी और बहुत सारे कलाकार थे। तो आप बताएं उस फिल्म के बारे में।

जी श्रोताओं, और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं, तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं इनमें कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में, और एक फिल्म संजीव कुमार की थी जिसमें देवेंद्र वर्मा और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी, तो आप इसके बारे में भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी और भ्रम दोनों ही मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भ्रामक स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मूल कारणों और प्रभावों में गहरा अंतर है। जहां गलतफहमी दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में कमी का परिणाम है, वहीं भ्रम व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता में त्रुटि या मानसिक विकार है। एक और श्रोता ने लिखा है, फिल्म ज्वेल थीव देवानंद, अशोक कुमार, वैजयंती माला, पूरी फिल्म में लगता है कि देवानंद ही हैं जो असल जो चोर हैं, लेकिन वैजयंती माला का पहचान की इन्होंने मतलब फिल्म की जो बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जागते हुए भी सपनों को देखते हैं और कल्पना लोक में पहुंचकर बहुत कुछ देखते हैं, पर असलियत में वहां कुछ भी नहीं होता, यानी इनका कहने का मतलब ये है कि यहां भी हमें गलतफहमी होती है, जी हाँ कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है मेरा साया फिल्म में, एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया।

ये दो सहेलियां हैं, वो बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि उनके महबूब की क्या पहचान है, क्योंकि गलतफहमी ना हो जाए इस वजह से। एक और श्रोता ने लिखा है कि झुमका गिरा रे, ये गीत बहुत अच्छा लगता है मेरा साया।

फिल्म का एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा साया फिल्म के तो सभी गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन नैनो में बदरा छाए गीत सुनो तो अनुभूति का स्तर जो होता है वो अलग होता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी सवाल के लिए जो हमने आपसे पूछा था कि मृग तृष्णा के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो रेत में अक्सर या रेत के समंदर की तरह नज़र आती है, ऐसा लगता है कि दूर पानी है लेकिन पानी वहाँ होता नहीं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, दो गायिकाएं हैं, क्या उनके गीत में आपको कुछ गलतफहमियां आवाज़ में होती हैं? तो अगर आप पहचान रहे हैं इन्हें तो आप ज़रूर लिखें। और सफ़र के दरमियान भी हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप लिख सकते हैं।

आपकी कसम फिल्म का ये गीत था मुमताज पर फिल्माया गया। लता मंगेशकर की आवाज़ थी और श्रोताओ दो जो कलाकार हैं गायक कलाकार उनके बारे में हमने आपसे पूछा था। ये लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर जी की बात हम कर रहे थे क्योंकि इनके गाए हुए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बड़ी सारी गलतफहमियां हो जाती हैं कि किस गीत को किसने गाया है। एक और श्रोता लिखती हैं कि संजीव कुमार मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म इतनी सी बात का इन्होंने जिक्र किया है। जी हाँ, हम लेकिन बात कर रहे हैं फिल्म अंगूर की। और एक और श्रोता लिखती हैं कि पारिवारिक सामाजिक ज्वलंत विषय पर आधारित फिल्में हैं ये, ऐसी गलतफहमी अगर आ जाए तो बैठकर सुलझा लें, नहीं तो कितनी जिंदगियां जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मेरे महबूब फिल्म के बारे में कि अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म ये थी, साधना पर फिल्माया गया गीत था और साथ ही अमिता भी नज़र आती हैं श्रोताओं, और इस गीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से ज़्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और लहजा माने रखता है, यदि कहे गए शब्द और बोलने का तरीका मेल नहीं खाते तो गलतफहमी हो जाती है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात रखने का इंतज़ार करते हैं या आधा सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आपको फिल्म और कलाकार बताने हैं।

चित चोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा क्रमशः अशोक और बहादुर की भूमिका में।

पालेकर और जरीना बहाव पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे चितचोर फिल्म से। आवाज़ें थी यशुदास और हेमलता की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आपकी सभी कमेंट्स के लिए, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुरीला सफ़र यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं डॉक्टर्स डे पर। आज पहली जुलाई कैलेंडर की वो तारीख जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आज की तारीख उन डॉक्टर्स के नाम है जो हमें बीमार होने पर नया जीवन देते हैं। मरीज के अटूट विश्वास और एक चिकित्सक के निपुण प्रयास के बीच जो अदृश्य सेतु बनता है वही संसार की सबसे सुखद अनुभूति होती है। डॉक्टर्स तमाम दवाइयों के साथ साथ जब अपनी दुआ की पोटली थमाते हैं और कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे, तो आपकी आधी बीमारी उड़न छू हो जाती है। आप सबके मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं जब सफेद कोट में एक चिकित्सक आपसे मुस्कुराकर नसीहत की पोटली थमाते हैं, तब आप और हम यही कहते हैं।

दोस्तों, ईश्वर के बाद जीवन दायक हमारा डॉक्टर ही होता है। ये दिन देश के सभी डॉक्टर्स के प्रति आभार जताने का एक खास मौका है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1961 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म और उनकी याद का दिन भी 1 जुलाई है। उन्हीं की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स की अनिद्रा और अथक परिश्रम में ही जाने कितने परिवारों की चैन की नींद और अधरों की खोई हुई मुस्कान महकती है। जब डॉक्टर आपको मुस्कान देते हैं तो बदले में उन्हें भी आप सम्मान दें।

0: कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह खुद नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर फरिश्ता यानी डॉक्टर को भेज दिया। रात के 3 बज रहे हों या सुबह के 4, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कोई डॉक्टर किसी की जिंदगी बचाने के लिए जाग रहा होता है। किसी ने कहा है, मर्ज का खौफ मिट जाता है पल भर में, जब कोई डॉक्टर मुस्कुरा कर कह दे कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दवाएं तो सिर्फ साइंटिफिक फॉर्मूला है, असली जादू तो उस डॉक्टर के भरोसे और उनकी डांट में होता है जो अपनों जैसी लगती है। अपनी खुशियां, अपने त्योहार, यहाँ तक कि अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं डॉक्टर्स। ये हौसला सिर्फ डॉक्टर के पास ही होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाओगे। कहते हैं कि विज्ञान जब करुणा से हाथ मिलाता है तब।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के 11 वर्ष पूरा होने पर इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिख रहा है। डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सरकारी सहायता पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंच रही है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार में भी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान वे 494 करोड़ रुपए लागत के 629 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कोदो कुटकी उत्पादक करीब 4 किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की जाएगी। किसानों को ये राशि 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दी जा रही है। महोत्सव स्थल पर कृषि यंत्रों, मिलेट्स उत्पादों और स्व सहायता समूहों के उत्पादों की विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। सरकार ने इसके लिए 95,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सत्र 2026-27 में अब तक 5,48,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 2,93,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। पिछले वर्ष की तुलना के प्रवेश में 42.03% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज 3 महत्वपूर्ण दिवसों पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर कहा कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के निर्माण में इनकी अहम भूमिका है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों के समर्पण को असंख्य परिवारों के लिए आशा और नवजीवन का आधार बताया। वहीं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस पर उन्होंने कहा कि डाक कर्मचारियों की कर्मनिष्ठा ने डाक व्यवस्था को जनता के विश्वास का सशक्त माध्यम बनाया है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज जम्मू में तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण और RFID कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शुक्रवार को पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना

0: करेंगे। ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बालाघाट और डिंडोरी में आज अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देवास, हरदा, बैतूल, पांडुर्णा और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब बात खेल की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। मुकाबले पर बारिश का साया है। करीब 80% बारिश की संभावना जताई गई है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद श्रेयस अय्यर की टीम जीत के साथ नई शुरुआत करेगी। युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर भी चर्चा तेज है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर ने जिले के समस्त रेत खदानों में मानसून अवधि के दौरान खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आगरमालवा के अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर एक दूध डेयरी संचालक पर 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया और लोक निर्माण विभाग मंत्री और नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान केवल 100 दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी से लगातार चलने वाला जन अभियान है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुँचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई

0: के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीवी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो

0: के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
0: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित

0: ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: India's engagement.
3: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
2: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के

0: मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का।

0: पे लिखा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
0: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज़ में एक राज फिल्म से। और श्रोता, इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था दुल्हन एक रात की फिल्म का नगमा। उस गीत में संगीत था मदन मोहन जी का।

प्रेम धवन का लिखा गीत आपने सुना, रवि का संगीत था, आशा भोसले की आवाज़, फिल्म एक फूल दो माली से ये नगमा आप सुन रहे थे। ये गीत है जब जब फूल खिले फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है श्रोताओ, और यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ उनका मन का मौसम तो वैसा ही है।
2: बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
1: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना?
2: जी हाँ, बिल्कुल।
1: हाँ, और बहुत अच्छा लगता है। अपना एक आनंद अलग ही है आरती
2: जी, बिल्कुल।
1: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रस्ते में भीग कर आती थी? मुझे तो याद है
2: बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता ना कि हम जान बूझ के भीगते हैं, फिर ना अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है जब बारिश का मौसम आता है, तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
1: उसका एक अलग ही मजा है।
2: बिल्कुल,
1: बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे, जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ, कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं।
2: बहुत, सच में बारिश जो होती है ना एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना, वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदे पड़ती
1: है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदे ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए हैं।
2: तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार, जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें।

0: या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी, जो कि झारखंड की पहचान है।
1: अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम।
0: जी बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर।
1: आहा, क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है।
0: बिल्कुल। लेकिन हमारे बीच स्वस्थ जो
1: प्रतिस्पर्धा चलती है। बिल्कुल, हमारे सखियों और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं, है ना, निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है। आपने कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती? आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें आपने अटेंड किया, उसको अटेंड किया, या आप किसी से प्रतियोगिता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं?
0: प्रतिस्पर्धा में आप कहाँ तक चले गए, कितनी दूर तक चले गए, यानी कि आपने मन से आप कितनी दूर तक चले गए, कि मतलब एक होती ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता, यानी कि कोई बात नहीं, चलो उसने आगे किया, अब हम भी अच्छा करेंगे। एक होती है कि उसने कैसे किया,
1: मैं
0: उसको पीछे खींचे। हाँ। तो वो आप बताइए कि मतलब कौन सी मतलब आप प्रतियोगिता के बारे में।
1: आपके कहने का मतलब ये है आरती, कि कई बार क्या है, कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
0: जी हाँ।
1: है ना, और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना, किसी को बढ़ता हुआ देख करके, उसकी शर्ट मेरी सफेद, मेरी शर्ट से सफेद क्यों वाली जो जलन है, वो हमें थोड़ा परेशान भी कर देती है
0: और पीछे भी खींचती है।
1: पीछे भी खींचती है, आप एक ना एक दिन फिर पीछे हो जाते हो। आप उस दौड़ में खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने देखी है ना, तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रखें। तो बताइए आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे
0: आप अपना नजरिया हमें बताइए। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर।
1: अच्छा,
0: देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं, लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहते हैं, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, कि कुछ भी हो, सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो, सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: उनकी राय मांगते हैं।
1: हाँ।
0: फिर वो जब हम कहते हैं कि नहीं आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस पे सबसे पहले हम विश्वास करते हैं, तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके बारे हम बात करेंगे।
1: बताइए आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं, और आपका जीवन में, आपके जीवन में उनका क्या स्थान है? कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी उन्होंने मुसीबत को हल किया?
0: जी बिल्कुल, आप बताइए।
1: तो इन सभी पर हम विचार करेंगे, एक गीत सुन ले। और
0: देखो ये आप बस मेरे साथ ना ऐसा मत करा करिए।
1: व्यंजन लेके आई
0: हूँ। बिल्कुल, मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ, और हमारे जो श्रोता है वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में। सोचिए कितना, कहां बारिश का मौसम आती है, पकौड़ों की तो मतलब ऐसा लगता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना, उसके साथ पकौड़ों की
1: गर्मा गर्म पकौड़े मिली होती है। बिल्कुल सही कहा
0: जी।
1: तो बताइएगा आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह से पकौड़े बनाते हैं? कई तरह के पकौड़े,
0: कौन से पकौड़े बनाते हैं,
1: कौन से बेसन के, और
0: ताकि हम उसको एकदम उसको सोच
1: ले,
0: कल्पना करके उसको हम खा ले।
1: नहीं भी हमारे लिए भेजेंगे हमारे सखी और सखा, और हम उसे खा भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम हो रहा है।
0: बिल्कुल, एक गीत लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है, रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं। पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए,
1: जी
0: है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है?
1: डॉक्टर,
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं।
0: हाँ।
1: और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते या बहुत दूर नहीं जा सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं।
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके,
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज़ बुखार है, इस तरीके की चीज़ें, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीज़ें होती हैं तो हम फ़ोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें, वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं, अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस जो इस चीज़ का विशेषज्ञ है, तो आप वो उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं।
0: हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए। ऐसी स्थिति भी होती है कई बार
1: जी।
0: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था। घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी, तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते थे।
1: बिल्कुल,
0: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है।
1: जी, ये एक जो चीज होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना। हाँ। कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं नहीं आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। और जो पारिवारिक चिकित्सक हैं वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि हमें

0: मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे। और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में ही समझते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं। तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ, वो जानते हैं इतिहास हमारा कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है। तो वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज़ को अच्छे से समझता है। तो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं तो वो भी बताता है कि आप ये चीज़ें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। और जैसे आरती, आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं। तो ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा, वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है कि भाई आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है, इस तरह की चीजें नहीं खानी है।
1: बिल्कुल। और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसा खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं। तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इसको इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना, हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके। और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर और मरीज के बीच, सबसे बड़ी बात क्या होती है आरती, की हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
1: जी हाँ,
0: आपने अगर खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं नमक कम खाइए। अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो नमक ऊपर से और लेती हूँ। तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो कैसे आपको ठीक करेंगे। और फिर जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
1: बिल्कुल। और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई परवाही की है इस बात के बारे में भी। अगर हम कोई हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं तो फिर जाते हैं उनके पास, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही जरूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा तभी आपको ये परेशानी हुई है। तो क्योंकि वो हमारी बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना, उस पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे अब आप तुम आज पकोड़े खिलाएंगे ना हमारे श्रोता, तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी।
1: बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं। कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर हर समय नहीं।
0: बिल्कुल। अच्छा, आपको सीधा साधा खाना मौसम के अनुरूप खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ भोजन खाइए।
1: ये जो मौसम रहता है ना, इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होते हैं वही सादा भोजन।
0: फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है।
1: थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं,
0: बहुत तरीके हैं खाने के,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: तो हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहें या उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहें, स्वस्थ रहें।
1: तो हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना जरूरी दवाइयों से बचाया है। उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं ये।
0: बिल्कुल। और भी किसी ने कुछ लिखा?
1: बिल्कुल
0: है?
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसके बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था। और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकेंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकेंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है अब कि वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
0: जी।

0: एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है। और ये भगवान जैसे होते हैं पारिवारिक चिकित्सक हमें हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
1: जी, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
0: और देखिए हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कम्प्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
1: बहुत अच्छी बात है। तो और एक महश्रोता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं। इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
0: क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं।
1: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज़्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज़्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज़्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
0: बिल्कुल सही कहा। और चलिए अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है।
1: जी, तो एक गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अभी आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं, और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में जी, महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिर दर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है उसे।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती है ना उससे थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम होती है।
0: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहनें पहनती हैं, जब हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती हैं, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम जैसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये
1: जी। और जो जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
1: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की ज़रूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
0: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुँचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं, और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है इसको जलाकर देखा जाता है।
1: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों

0: जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है
1: अच्छा
0: जी, और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है, जिससे वो सूख कर काली राख में बदल जाती है। इसकी इस प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है, जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
1: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं, और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको,
0: जी।
1: और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं।
0: जो साड़ी हाँ। इतना ज्यादा पहनता है वो समझता है,
1: समझता है कि कैसे इसको रखना है, और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है
0: हाँ,
1: स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं, और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हाथ से और मेहनत से बनती
1: बनाई
0: है।
1: जाती है, और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है, और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि
0: जी
1: अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है ये।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी होती हैं साड़ियां।
1: हाँ,
0: एक गीत सुन लेते हैं ना।
1: गीत तो सुन लेते हैं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम
0: क्या?
1: शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
0: मुझे मालूम था ये आप कहने वाली हैं।
1: चलिए सुनते हैं ये
0: जी।
1: गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने
1: जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना।
0: करिए
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ।
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारी सखा लिख रहे हैं, उनकी

0: बारे में बात करते हैं कि वो क्या
1: हाँ
0: लिख रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना, आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद

0: कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना, आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है वो ज़्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और देखा जाए तो प्रतियोगिता जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुँचने का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
0: बिल्कुल, एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कंपटीशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना, जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
1: हाँ,
0: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
0: बिल्कुल, और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते ही रहते हैं।
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
0: बिल्कुल, और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
0: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्म विकास है हम वो कर सकें, न कि हम उसमें लग के अपने अपने को नुकसान पहुंचाएं,
1: अपने जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और कि कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवा कर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा।
0: ऐसा होता है मंदाकिनी जी कि प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं।
1: हाँ।
0: क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं।
1: हाँ।
0: फिर हमें हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
1: ये तो जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं, कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है।
0: बिल्कुल,
1: आप हार कर भी जीत जाते हैं।
0: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे एक खुशी दे सके,
1: हाँ,
0: तो सबसे बड़ी बात ये होती है,
1: प्रतियोगिता
0: उसके चेहरे की हंसी देख के ही आपको लगेगा कि
1: मजा आता है। अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते हैं।

0: दे कि हमारा बच्चा जीत गया है,
1: बिल्कुल
0: तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है।
1: जी।
0: और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और
1: जी।
0: हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से
1: बिल्कुल
0: हिस्सा लेना है, वो कोई भी
1: बस अपने आप
0: प्रतियोगिता
1: को
0: हो।
1: मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: उसको मजबूत रखिए।
0: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत,
1: जी
0: अगर आप हार कर भी आपका मन नहीं हारा है फिर
1: जी
0: भी आप जीत जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: बहुत बार ऐसा होता है हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं जीतने वाले हैं जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन
1: बिल्कुल
0: होता है वो हमें,
1: वो मनोबल जो होता है ना, वो
0: हाँ
1: मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
0: बिल्कुल। इसलिए
1: जी
0: प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे
1: आगे
0: लेकर
1: जी
0: जाएं।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी है, अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और
0: वो
1: आगे
0: है,
1: भी रहेगा
0: हाँ जी हाँ आगे भी रहेगा, वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन,
1: व्यंजन।
0: और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं पकौड़े
1: बना कर लेकर आए हमारे लिए
0: बहुत अच्छी अच्छी

0: रेसिपी भेजी है उन्होंने, तो बात करते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: जो हमारे जो जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खौलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खौलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या बात
1: बहुत
0: करिए,
1: शानदार,
0: सच में
1: बहुत शानदार,
0: क्या
1: बहुत
0: मतलब,
1: शानदार,
0: ऐसे तो मतलब सोच नहीं सकते,
1: बिल्कुल।
0: बहुत
1: इन्होंने
0: बहुत बढ़िया बात
1: देखिए
0: कही है।
1: कितना इसको काव्यात्मक तरीके से,
0: हाँ
1: क्लासिक तरीके से पेश किया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा
0: जी
1: लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से,
0: सच में
1: है
0: सच
1: ना,
0: में
1: अपने विचार प्रकट करें, तो कार्यक्रम का मजा मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है, और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए आलू, पालक, बेसन लीजिए, और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए। मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है, और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है, और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए। और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें, और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाए बिना पानी डालें, और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तलें एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर, और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें। कुरकुरा होने तक इसको पकाएं मध्यम आंच पर, दोनों तरफ से इसको हिला के पकाते रहें। अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताई है, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिए की चटनी के साथ खाइए आरती जी।
0: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि आप
1: हाँ,
0: जैसे
1: मैंने देख
0: पकौड़े
1: लिया
0: वो छन
1: था,
0: के निकल
1: तुम
0: ही रहे।
1: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना। हाँ
0: एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
1: हाँ हाँ
0: और
1: बिल्कुल
0: एक
1: सही कहा
0: जी
1: इन्होंने।
0: बिल्कुल।
1: हाँ
0: और हमारे जो एक है हमारी जो श्रोता है वो लिखती है कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
1: बाप रे क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया इनके, है ना।
0: मैंने कहा ना बारिश
1: और
0: होते
1: कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है, गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिए का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी टोमेटो केचप के साथ, इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है, और ये मौसम का साथी है। भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो, तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना आरती, बहुत स्वादिष्ट लगती है, और

0: छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत ज़रूरी है, या फिर
1: जी
0: कॉर्न स्टार्च भी ले
1: हाँ
0: सकते
1: हाँ
0: हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा, घोल को तैयार करें। एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं। इसमें कटे हुए प्याज, आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान दें कि घोल ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आँच गर्म रखें। तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए, और छमाछम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी। तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें। अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें। धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कढ़ाही में सरसों का तेल गर्म करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें। और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, इसे सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
0: तो अब पकौड़े बहुत खा लिए, गीतों का आनंद
1: भी तो ले लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे, है ना। और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सही।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविक भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माताजी अध्यापिका थीं और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहाँ से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहाँ मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएँ, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीज़ें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
2: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
2: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूँ ठीक से, उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
2: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
2: धर्मयुग, कादम्बिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था, तो उसमें

0: जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साहवर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
0: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय, और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं
0: जी,
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
0: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
1: जी,
0: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृत मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए, और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं, नकारात्मकता को दूर करके।
1: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं, और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती हैं। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
0: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
1: उसका आकाश
0: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था। उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था, और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
1: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
0: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया, लेकिन कहानियाँ मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
1: जी,
0: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर 3 भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
1: जी।
0: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, और व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं, और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
1: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राड़ी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
0: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और 2-3 राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
1: जी।
0: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा, और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था, और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
1: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद मिला
0: जी।
1: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे,
1: क्या बात?
0: बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर,
1: जी
0: और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता
1: जी
0: और गिद्धों का स्वर्णकाल,
1: जी
0: अंधे पीसे
1: जी
0: और साहित्य के शनिदेव,
1: जी
0: ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं, वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज़्यादातर वो व्यंग मेरे पहले व्यंग संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग है जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है।
0: जी।
1: ये सीधी सी बात होती है, अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो जब वह नए कुत्ते पर भौंकता तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं ना कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है। वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। इस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक

0: आया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया।
1: जी।
0: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझाएं, क्योंकि व्यंग जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना,
1: जी
0: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का,
1: जी
0: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे।
1: जी
0: तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
1: जी जी
0: तीसरा जो है वो सांधे पीछे हैं, ये हमारी व्यवस्था में मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है, पूरा मुहावरा है कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधे पीसे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके

0: जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
1: जी,
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है।
1: जी,
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी हैं, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे। कितना भी लंबा आप लिखेंगे, पत्रिकाएं छापेंगे। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया। धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई
1: है। और पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था, पाठक का।
0: हाँ, बहुत बड़ा वर्ग था। बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का। और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं। समय कब हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं।
1: जी।
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है और व्यंग विधा में हाथ आजमा रहा है। अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हम उसे भी व्यंग समझ लेते हैं और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं। तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ और मुझे एक गीत बहुत पसंद है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम
1: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग्य हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
0: जी,
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है।
0: जी,
1: जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू की ट्रेनिंग, राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
0: जी,
1: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूँ जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी,
1: आपने मीम्स की बात की है। मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीज़ें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
1: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी,
1: जो 4,000 5,000

0: शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम हैं, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहाँ तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं, और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं
1: जी।
0: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है
1: जी।
0: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज़्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि व्यंग में उपन्यास काफ़ी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
1: नहीं हो पाया जी।
0: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं, ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं, कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका लें किसका ना लें। वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है, इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं हैं, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। मेरा अनुमान ऐसा है,
1: क्योंकि समय कम है लोगों के पास। और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते हैं, क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है। तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है। तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप व्यंग लेखक हैं, क्या व्यंग सभी पर लिखा जा सकता है, या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं, या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
0: जी, ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएँ हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहाँ तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है
1: जी।
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है, तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है, उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए
1: जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है
0: जी। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है। व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है,
1: मतलब वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी चाहिए।
0: उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं, किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं, और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश
1: जी। हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर, और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है
0: जी।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच
0: जी। जरूर।

0: कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं
1: जी
0: जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे
1: क्या
0: बिना।
1: बात है,
0: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनवाएं।
1: आइए सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग्य को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग्य पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी,
1: व्यंग्य का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग्य बिरादरी से बाहर है। लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिलमिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी, जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग्य एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो

0: समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है
1: जी
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है।
1: जी
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूँ जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूँगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुँचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुँचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के ज़माने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीज़ें तुरंत मिलती जा रही हैं, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
0: जी जी, एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
1: जी, मंदाकिनी जी ने आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो

0: कैयावरी का शौक होना चाहिए।
1: जी मंदाकिनी जी ने आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है, और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा यह है कि कुएं का मेंढक होना।
0: जी
1: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं
0: बिल्कुल।
1: का मेंढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है, और वहाँ पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं।
0: जी,
1: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
0: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक ही यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
1: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे जैसे हमारे यहाँ सूरदास,
0: जी
1: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्रिय थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
0: जी जी
1: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे,
0: जी
1: जिन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत, यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया। और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो
0: नहीं
1: सकता
0: हो
1: है,
0: सकता।
1: और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आईं और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो
0: जी,
1: मुझे लगता है कि विचारों का पल्लवन
0: यायावरी
1: यायावरी
0: से
1: से
0: ही
1: होता
0: संभव।
1: है।
0: दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते
1: जी
0: हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह
1: जी
0: ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो
1: जी
0: लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर
1: जी
0: में जो
1: जी
0: लोग निकाल
1: जी
0: देते
1: निश्चित
0: हैं,
1: निश्चित रूप
0: है
1: से,
0: ना?
1: निश्चित रूप
0: तो
1: से।
0: जब बात रचनात्मकता की आती है, तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना
1: जी
0: बहुत ज्यादा मदद करता है।
1: जी
0: तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले
1: जी
0: हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक
1: जी
0: गीत सुन
1: जी
0: लेते हैं।
1: जी

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका ये, इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुँच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुँचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं, फिर इस ज़माने में यात्रा संस्मरण की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहाँ वो जिस जगह पे गया है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के खान पान, वहाँ के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़ें तो आपको सूचनाएँ तो मिल जाएंगी
1: जी,
2: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों के एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर के यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है। मैंने मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं, मैंने प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूँ
1: जी,
2: और वहाँ पर जा करके मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहाँ के जन समुदाय को, वहाँ की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके अंदर जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है
1: जी।
2: जी,
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा लिखा जोखा लिखा है।

0: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगी,
1: हाँ,
0: दर्शन,
1: दृष्टि
0: दृष्टि और
1: और
0: पांव।
1: पांव।
0: दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है, मूर्ति, उसके दर्शन से भी है, और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन भी इसमें आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है? क्या आप गए, यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहाँ आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहाँ आपने दर्शन किया वहाँ का जीवन दर्शन क्या है, इस चीज़ को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है? और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आप जब यात्रा करते हुए अपने मूल चीज़ों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीज़ों को मिला करके मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए,
0: जी
1: अंडमान निकोबार द्वीप
0: जी
1: समूह और मदुरई, सिक्किम वगैरह,
0: जी
1: इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा, पंचमढ़ी,
0: जी
1: इन
0: जी
1: सभी का आपने
0: जी
1: इसमें वर्णन किया है।
0: जी
1: बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो
0: जी
1: आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी
1: आज हमारा
0: जी
1: जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं। इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ,
1: जी
0: ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ, जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहाँ पर लोग लेके जाते हैं 1 मिनट 2 मिनट के, उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूँ भाई, आपको ये चीज़ तो घर पे टीवी पे मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूँ तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूँ तो प्रकृति में मैं खो जाता हूँ। प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है, मुझे इस बात की, आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि यहाँ फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूँ मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण में डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ बजाय
1: कैमरे
0: मोबाइल
1: की
0: कैमरे
1: आंखों
0: के।
1: से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस
0: धन्यवाद।
1: चलते चलाते एक गीत का और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

ये था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नज़र, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलते हुए रात से गुफ्तगु, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार

हार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं, आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

0: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आज विश्व विख्यात मूर्धन्य बांसुरी वादक पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्मदिन है। इस अवसर पर आइए सुनते हैं विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये रिकॉर्डिंग, जिसे साल 2012 में दीपावली के मौके पर रिकॉर्ड किया गया था।
1: FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी खंडवा है। आइए सुने NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
1: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी?
1: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार, अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
2: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुँचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से

0: अरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
1: जी
0: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई यह है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
0: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
1: जी,
0: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
6: मैम।
4: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे,

0: तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
1: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?

0: किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
1: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
2: यस मैम।
1: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
2: अच्छा।
1: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
2: अच्छा।
1: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
2: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम,
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: हाँ, जी मैम।
5: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह।
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना

0: ना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
2: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
5: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव

0: की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
0: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना। बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
0: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना। मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
0: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
0: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना। ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
0: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे भाई, ये भी
0: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
2: मैं बोलो। अच्छा देखो भैया, तुम भी तो हमी में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहां खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग चार दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी!
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने तीन मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
6: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
6: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
6: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
6: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं।
5: मुखिया जी,
6: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
5: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
6: चढ़ रहा है।

0: तो तीसरी मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
1: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
0: नालायक डरपोक, अरे भाग रहे हो, इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
1: जैसी आपकी मर्जी।
0: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है, दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, अरे कहाँ जाऊँ मैं, ये पानी में डूब रहा हूँ मैं, अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है, अरे बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूँ मैं, नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं युववाणी।

बारिश की इन हल्की हल्की फुहारों के साथ आज आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट भावना। दोस्तों, एक पल के लिए अपनी खिड़की के बाहर नजर डालिए, कहीं हल्की हल्की बूंदे धरती को चूम रही है तो कहीं बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है तो कहीं मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू मन को अपनी ओर खींच रही है। दोस्तों, बारिश बचपन की वो कागज की

0: जो हमारे सभी दोस्तों ने अपने बचपन में जरूर तैराई होगी। माँ के हाथों की गर्मा गर्म पकौड़ों की बात, दोस्तों के साथ भीगते हुए खिलखिलाकर हंसने का बहाना, और कभी कभी किसी अपने की याद में खिड़की के पास बैठकर चुपचाप बारिश को निहारते रहना। दोस्तों, हमारी इतनी सारी बातें हैं कि कभी खत्म नहीं होने वाली। आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रोज की तरह पूछ लेते हैं आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? और दोस्तों, हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह!
2: फसा! अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, आज यानी 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि दोनों के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इनका निधन 1 जुलाई 1962 को हुआ। चिकित्सा क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मान देने के लिए वर्ष 1991 से भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर

0: उत्तर है मानवता की शान। ना ही दिन देखते हैं ना ही रात, बस जीवन बचाना जिनकी बात। ऐसे हर चिकित्सक को बार बार प्रणाम, आपसे ही रोशन है जीवन की हर शाम। दोस्तों, क्या आपको पता है आज का दिन CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी है। इसके अलावा आज बैंक डे भी मनाया जाता है। और अगर आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो CA डे और बैंक डे का इतिहास क्या है, हमें पत्र लिखकर जरूर बताइएगा। आइए श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं हमारी युवा शक्ति सकारात्मक दिशा में उपयोग का आह्वान करती इस वार्ता को।
1: जवानों, याद रखो, असली राह इस अंधे मोड़ के पार है। आज के युवा एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं जहां पहचान के प्रश्न, सफलता के सपने और सामाजिक आर्थिक चुनौतियां आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। यद्यपि आगे का मार्ग कठिनाइयों से भरा है, फिर भी रचनात्मक जुड़ाव और सकारात्मक सामाजिक शक्तियों का समर्थन युवाओं की चुनौतियों को अवसर में बदलने और सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनने में सक्षम बना सकता है। युवावस्था मानव जीवन का सबसे गतिशील और निर्णायक चरण है। ये एक ऐसा मोड़ है जहाँ से अनेक मार्ग निकलते हैं, कुछ सफलता और पूर्णता की ओर ले जाते हैं जबकि अन्य लक्ष्यों से दूर ले जाते हैं। ये वो अवस्था है जब आकांक्षाएं, रचनात्मकता और मानसिक और शारीरिक ऊर्जा मिलकर एक सार्थक भविष्य का निर्माण करती है। प्रत्येक समाज अपने युवाओं को आशा की दृष्टि से देखता है, ये मानते हुए कि वे उसकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे और एक बेहतर कल का निर्माण करेंगे। हालांकि 21वीं सदी के तेजी से बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी परिवेश में युवा स्वयं को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां पहचान का संकट, सपनों और वास्तविकताओं का टकराव और अवसरों और चुनौतियों के बीच संघर्ष पहले से कई अधिक तीव्र हो गया है। आज के युवाओं के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक पहचान और आत्मखोज का प्रश्न है। सोशल मीडिया, डिजिटल संचार और सूचनाओं के निरंतर प्रवाह ने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया है जहां सीमाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं और पारंपरिक मूल्य और आधुनिक प्रभाव खुले तौर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। युवा विविध संस्कृतियों, जीवन शैलियों और विचारधाराओं के संपर्क में आते हैं जो उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं, लेकिन साथ ही इस बात को लेकर भ्रम भी पैदा करते हैं कि वे कौन हैं और उनका संबंध कहाँ है। सामाजिक अपेक्षाओं, ऑनलाइन रुझानों और साथियों के प्रभाव के अनुरूप ढलने का दबाव अक्सर कई व्यक्तियों को आत्मविश्वास और पहचान के संघर्ष के लिए मजबूर करता है। एक ऐसे समाज में जहां सफलता को अक्सर भौतिक उपलब्धियों और सामाजिक मान्यताओं से मापा जाता है, कई युवा अपने जीवन के उद्देश्य और स्थान को लेकर चिंता और अनिश्चितता का अनुभव करते हैं। चुनौती केवल आधुनिकता को अपनाना नहीं है, बल्कि मूल्यों, आत्मसम्मान और दिशा की स्पष्ट समझ पर आधारित एक संतुलित पहचान विकसित करना है। राह इस नाजुक मोड़ से आगे है। चौराहे को ही मंजिल समझ लेना एक खतरनाक गलती हो सकता है। हर युवा एक सफल करियर और सुरक्षित भविष्य का सपना देखता है, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां अक्सर इसमें बाधा बन जाती हैं। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सीमित रोजगार के अवसर कई देशों में चिंता का विषय बन गए हैं। शिक्षित युवाओं को भी अक्सर अपनी योग्यता और आकांक्षाओं के अनुरूप सार्थक रोजगार पाने में कठिनाई होती है। बेरोजगारी के परिणाम केवल आर्थिक कठिनाई तक सीमित नहीं है, लंबे समय तक बेरोजगार रहने से आत्मविश्वास में कमी आती है। लोग अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं और भविष्य से उनका विश्वास कम होने लगता है। आर्थिक असुरक्षा के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करना, व्यवसाय शुरू करना, विवाह करना या स्वतंत्र जीवन जीना जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी देरी होती है। समाज और सरकार को ये समझना होगा कि बेरोजगारी केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौती भी है। सरकारों, शिक्षण संस्थाओं, उद्योगों और नागरिक समाज संगठनों को मिलकर रोजगार के अवसर पैदा करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और युवा उद्यमियों का समर्थन करने के लिए काम करना चाहिए जो आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रगति में योगदान दे सकते हैं।

0: शिक्षा आज भी युवाओं को सशक्त बनाने और आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने में सक्षम बनाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। हालांकि आज की शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को गहन चिंतन, समस्या समाधान क्षमता, संचार कौशल, नैतिक मूल्यों और अनुकूलनशीलता से लैस करना चाहिए। तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों के इस युग में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विशेष महत्व है। सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल संचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीनीकरण ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण और अन्य उभरते क्षेत्रों में कौशल रोजगार की संभावनाओं और आर्थिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। युवाओं को ऐसे आदर्शों, शिक्षकों, मार्गदर्शकों और सामुदायिक नेताओं की भी आवश्यकता है जो उन्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद कर सके। जब युवाओं की ऊर्जा और रचनात्मकता को रचनात्मक कार्यों की ओर निर्देशित किया जाता है तो वे राष्ट्रीय विकास के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन जाते हैं। कला, साहित्य, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल, सामुदायिक सेवा और वैज्ञानिक नवाचार व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जुड़ाव दोनों के लिए स्वस्थ मार्ग प्रदान करते हैं। खेल अनुशासन, टीम वर्क, दृढ़ता और नेतृत्व सिखाते हैं। साहित्य आलोचनात्मक सोच, सहानुभूति और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करता है। कला और सांस्कृतिक गतिविधियां सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। स्वयंसेवी पहलों में भागीदारी समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को पोषित करती है और सामाजिक एकता को मजबूत करती है। इसके विपरीत जब युवाओं को सार्थक अवसरों और रचनात्मक जुड़ाव का अभाव होता है तो वे निराश, अलगाव, अत्यधिक भौतिकवाद और यहाँ तक कि हिंसा के शिकार हो सकते हैं। इसलिए सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, परिवारों और सामाजिक संगठनों को ऐसे स्थान और मंच बनाने में समय और संसाधन लगाने चाहिए जहाँ युवा अपनी क्षमता का पता लगा सकें और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। किसी भी राष्ट्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने युवाओं का पालन पोषण कैसे करता है। परिवारों को भावनात्मक सहयोग और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। शिक्षण संस्थानों को बौद्धिक विकास और व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देना चाहिए। युवा कमजोर हो सकता है, उसमें निराशा उत्पन्न हो सकती है और हताशा की भावना भी पैदा हो सकती है। नीति निर्माताओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के अवसर और विकास कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को सफलता के अवास्तविक मानकों के बजाय सकारात्मक आदर्शों को बढ़ावा देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज को युवाओं की आवाज सुननी चाहिए। उन्हें केवल विकास के लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि भविष्य को आकार देने में सक्रिय भागीदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके विचारों, आकांक्षाओं और चिंताओं को मान्यता मिलनी चाहिए और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सार्थक भागीदारी होनी चाहिए। युवाओं में निवेश करना केवल सार्वजनिक नीति का मामला नहीं है, ये स्वयं समाज के भविष्य में निवेश है जहाँ ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास और उद्देश्य से सुसज्जित एक पीढ़ी सभी के लिए अधिक समृद्ध, समावेशी और सामंजस्यपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकती है। निष्कर्षतः आज के युवा एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जहां पहचान, सफलता की आशंकाएं और सामाजिक आर्थिक चुनौतियां आपस में टकराती हैं। यद्यपि आगे का रास्ता बाधाओं से भरा है, फिर भी अपार संभावनाओं से परिपूर्ण है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, रचनात्मक भागीदारी और सहायक सामाजिक संरचनाओं के बल पर युवा चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित कर सकारात्मक परिवर्तन के उत्प्रेरक बन सकते हैं।
1: जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण शिक्षा नहीं बल्कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा है। अपने कौशल का हुनर का विकास ही है जो केवल आपका ही नहीं बल्कि इस पूरे भारत का भविष्य निर्धारित करेगा। अभी आपने सुना पलक गुप्ता के स्वर में अबू अब्दुल्ला अहमद का युवाओं को प्रेरित करता आलेख। अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का क्रम यूथ चॉइस। दोस्तों, हमारे पास इतने सारे खत और ईमेल्स आए हैं कि मैं शुरू कहां से करूं समझ नहीं आ रहा। चलिए फिर देख ही लेते हैं कि हमारे पहले गीत के लिए फरमाइश आखिर आई कहाँ से है। हमारे पहले गीत के लिए फरमाइश आई है

ओमकारेश्वर से, राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, कुमारी सपना सेन, ओम सेन, द्वारकीबाई सेन। इंदौर से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा बाई चौधरी की। खंडवा से ममता मारकंडे, सरजय मारकंडे और बेबी किट्टू की। राजस्थान से हमारी फरमाइश आई है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी की। ग्राम जसवाड़ी से यशवंत, गोपाल नागनपुरे और रविशंकर करवर से की। नेपानगर से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा, बसंतीबाई और गणेश की। खंडवा से श्यामाबाई रायकवार की। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म क्रिश का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्रिश का ये गीत, जिसे गाया था उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने। हमारे अगले गीत के लिए फरमाइश आई है भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी की। नर्मदा नगर से सूरज, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा की। ग्राम खेगांव से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममताबाई वर्मा की। ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाक से साक्षी, ऋतुराज और पूर्णिमा पटेल। जसवाड़ी से हमें एक और खत प्राप्त हुआ है, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू और दिव्यांश ने। संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशन से अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना की। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म बैंड बाजा बारात का ये गीत। इसे गाया है श्रेया घोषाल ने।

अगले गीत के लिए हमें फरमाइश आई है नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन मंगला और राजेंद्र शाह की। छत्तीसगढ़ से हमें एक और पत्र प्राप्त हुआ है, महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मीमन देवी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी की। आइए सुनते हैं फिल्म सुल्तान का ये गीत। इसमें आवाज दी है राहत फतेह अली खान ने।

तो दोस्तों इसी गीत के साथ हमारा क्रम यही संपन्न होता है। आपको कैसा लगा हमें पत्र और ईमेल्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, हमें आपके खत और ईमेल्स का इंतजार होगा। और दोस्तों अब समय भी हो गया है कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का। तो दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न था, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है उदयपुर। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है केरल। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ दीजिए अनुमति आपकी दोस्त भावना डोंगरे को। नमस्कार।

श्रोताओ, आपने सुना युववाणी कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सभी को विद्याधर मुले का नमस्कार। पहला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में जावेद अख्तर का है, संगीत राहुल देव बर्मन का, फिल्म सागर।

फिल्म महान के बाद एक और धनवान गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओ। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये साहिल लुधियानवी का गीत है, संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का, और फिल्म जी हाँ धनवान।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओ, विद्याधर मुले के साथ आकाशवाणी खंडवा से आप सुन रहे हैं फिल्म संकेत।

भूपेंद्र और रूना लैला की आवाज में आपको सुनवाते हैं एक गीत जो गुलजार का है, संगीत जयदेव का है, फिल्म करौंदा।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों,
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
2: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
2: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं?
2: आकाशवाणी खंडवा पर।
3: श्रोताओ, अब पेश है प्रोग्राम का आखिरी गाना। इस प्रोग्राम का आगाज हमने किया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गीत से, और अब आखिरी गीत भी लता जी और किशोर कुमार की आवाज का ही है। फिल्म मनपसंद का ये गाना अमित खन्ना का लिखा हुआ है, संगीत राजेश रोशन का।
4: सारे गम प मगर सागा सागा रे गम प मगर सरे पर रे पा पदा निशा निध प म मधा।

0: re ga ma pa ma ga re sa ga sa ga re ga ma pa ma ga re sa re pa re pa pa ga mi sa ni pa pa ma ma ga ga da ni sa। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त करने की विद्याधर मुले को इजाजत दें। नमस्कार श्रोताओं। FM 101.2 MHz पर यह आकाशवाणी खंडवा है। शाम के 7 बजने वाले हैं। आपको सुनवाते हैं दिल्ली से हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है, बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस

0: को ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी खंडवा।
3: मंगल भवन
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम्स का खजाना।
6: तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला।
5: तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
7: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
5: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
7: क्यों?
5: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
7: वो कैसे?
5: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
7: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
5: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
7: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।

0: तो फिर सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: मेरी आश की अब तुम ही हो।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: श्रोताओं, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को हैं। आइए सुने भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया शासन और नागरिक सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी पहल। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG राम जी अधिनियम लागू। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी में धान महोत्सव में सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। और प्रदेश में मॉनसून सक्रिय, उज्जैन बालाघाट सहित 7 जिलों में झमाझम बारिश, बालाघाट डिंडोरी में कल अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरा होने पर इसे शासन और नागरिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में परिवर्तनकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि इसने शासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने नवाचार की संस्कृति को गांव और छोटे शहरों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इससे AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे तकनीकों में भी तेजी से विकास हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन

0: यादव ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की पहल से शुरू हुई देश की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में 81% डिजिटल भुगतान UPI के माध्यम से हो रहा है। 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भारत नेट सेवा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि AI क्षेत्र के लिए 45,000 से अधिक GPU स्थापित किए गए हैं और देश में 2,23,000 से अधिक स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। सरकार ने इसके लिए 95,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने आज द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाली 6-लेन सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 6,969 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिसकी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। इससे कानपुर कबराई का सफर 3.5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे रह जाएगा। ये परियोजना भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है और सागर भोपाल तक कनेक्टिविटी मजबूत करेगी।
1: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर हमीरपुर महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यह समारोह विद्यार्थियों के वर्षों के समर्पण और परिश्रम की सुखद परिणति है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से समाज का ऋण चुकाने और वंचित वर्ग के सशक्तिकरण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना युवाओं की ऊर्जा और प्रतिबद्धता से ही साकार होगी।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव कार्यक्रम में करीब 145 करोड़ रुपए की लागत के 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। डॉ. यादव ने इस मौके पर करीब 350 करोड़ की लागत से 586 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कोदो कुटकी उत्पादक किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। ये राशि 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दी गई है। इस मौके पर डॉ. मोहन यादव ने कहा,
3: मध्य प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का अभियान भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। जब मैं कोदो कुटकी की बात कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सभी श्रमिक भाई बहनों के लिए ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से, हमारे मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से 16,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के लिए 365 रुपए की राशि अंतरित की जा रही।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़वानी जिले के तलून में खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 21 कुंडीय महायज्ञ कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बड़वानी और निमाड़ की धरती संतों और लोक परंपराओं से समृद्ध रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मंदिर सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। राजस्थान के दौसा जिले में कल रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में प्रदेश के कई यात्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने राजस्थान सरकार से संपर्क बनाए रखते हुए प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को आत्म

निर्भर, सशक्त और रोजगार उन्मुखी बनाना जरूरी है। मंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पीएम जनमन के तहत प्रदेश में 1,44,000 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं और प्रदेश इस मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। मंत्री ने पंचायतों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश भी दिए। विदिशा जिले में हृदय रोग से पीड़ित 2.5 माह की मासूम अवनी को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अहमदाबाद भेजा गया। अवनी का उपचार आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क होगा। टीम ने बच्ची को उसके माता पिता सहित सुरक्षित भोपाल एयरपोर्ट पहुंचाया, जहां से उसे अहमदाबाद रवाना किया गया। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी जीवन रक्षक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत राज्य के गंभीर रूप से बीमार या दुर्घटना मरीजों को बेहतर और उच्च स्तरीय इलाज के लिए बड़े अस्पतालों तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता है। बात खेल की। मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के खिलाड़ी मोहम्मद कोनेन दाद का चयन भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। टीम 5 से 18 जुलाई तक बेल्जियम दौरे पर रहेगी। मोहम्मद कोनेन दाद फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन आईसीसी की टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने करीब एक साल से नंबर 1 पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा है। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं, जबकि इंग्लैंड के जो रूट तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल पहले और शुभमन गिल दूसरे स्थान पर हैं। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून एक्टिव है। आज उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सीहोर, उमरिया, धार और मंडला समेत 7 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग को मॉनसून पूरी तरह कवर कर चुका है, जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में दस्तक बाकी है। मौसम विभाग ने कल के लिए बालाघाट और डिंडोरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दादा ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में गौरव शिखर सम्मान का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यहां मुख्य अतिथि रहे। खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पॉलीथीन लाइए चाय पीजिए अभियान शुरू किया है। बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक शौचालय परिसर में पॉलीथीन जमा करने वालों को निःशुल्क चाय दी जा रही है। डॉक्टर्स डे पर भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सक कल्याण पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं आगरमालवा में इस मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आम, जामुन और नीम जैसे औषधीय पौधे रोपित किए गए। राजगढ़ में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने मानसून सत्र के दौरान रेत उत्खनन पर रोक लगाई। 1 अक्टूबर तक जिले की समस्त रेत खदानों में खनन कार्य पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। बैतूल जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत करीब 1,65,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई और शिवपुरी शहर के मनियर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। राजस्व टीम ने जेसीबी से अवैध रूप से बनाई गई सड़कों को हटाया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: हूँ जब तक निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा ने सुनी लेती है, जब तक तमख चैनन ने मिलतो है। तो आप भी सुनी लो निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

हमारा सभी किसान भाई बहन का साथ छे आज आपकी बहन वाणी महोदय तो स्वीकार करो मारी राम राम। भाई बहन न होनी फल तो हम सभी जन खावां न हमको अच्छा भी लगे न ई स्वास्थ्यवर्धक भी होए न आज 1 जुलाई का राष्ट्रीय फल दिवस भी छे। फल प्रकृति को अनमोल उपहार छे। ये हमारा भोजन को महत्वपूर्ण हिस्सों होने का साथ साथ किसान भाई ने की आय का बढ़ावना को सशक्त माध्यम भी छे। भाई बहनों ने फल मनुष्य का स्वास्थ्य कल्याण बहुत जरूरी भी छे। फल में विटामिन खनिज लवण फाइबर एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाए जी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावना में मदद कराए। फल न की बाजार में अच्छी मांग भी रहे। फल न का पेड़ लगावना से हमको लंबा समय तक फल प्राप्त होता रहे। साथ किसान भाई पारंपरिक फसल न का साथ फलदार पेड़ न बगीचा लगा सके। फल न की खेती करी न रोजगार का अवसर भी मिले। फल उत्पादन की तुड़ाई छटाई पैकेजिंग न प्रसंस्करण की सी ग्रामीण क्षेत्र न म रोजगार का अवसर भी बढ़ाए। किसान भाई अपना क्षेत्र की जलवायु न मिट्टी के अनुसार फल न को चुनाव करी सके न उनका पौधा लगा सके। साथ ही भाई बहन होनी अभी बरसात को मौसम भी शुरू हुई गयो तो इना मौसम में लगायल पौधा आसानी से लगी जाए। साथ ही फल नसी अनेक प्रकार का उत्पाद जैसा कि जैम जेली अचार जूस कैंडी पल्प सूखा फल उत्पाद तैयार करी न अपना उत्पाद को बेहतर मूल्य भी प्राप्त करी सका। साथ ही भाई बहन होनी फलदार वृक्ष केवल आय को साधन नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावज। फलदार पेड़ नसी फल तो मिलज साथ ही हवा का भी शुद्ध करज मिट्टी का कटाव खरोकज जैव विविधता का बढ़ावो देज जल संरक्षण में सहायता करज साथ ही जलवायु परिवर्तन का प्रभाव का भी कम करना में भी मदद करज। साथ ही बागवानी न फल उत्पादन का बढ़ावो देना का लेना शासन द्वारा कई तरह की योजना न भी चली जा रही जेमा की किसान भाई नख पौध सामग्री सिंचाई सुविधा संरक्षित खेती प्रसंस्करण इकाई का लेना सहायता भी दी जाए। किसान भाई अपना नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र उद्यान की विभाग या कृषि अधिकारी न से संपर्क करी न इन्हीं योजना न की जानकारी प्राप्त करी सके। तो भाई बहन नहुनी हम भी अपना जीवन में फल न का महत्व ख समझांगा न बागवानी का साथ साथ हम अपना घर का आसपास खाली जमीन में फलदार वृक्ष जरूर लगावांगा। भाई बहनोनी अब समय छे आपसे आज को प्रश्न पूछने को। तो आज को हमारा प्रश्न छे भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी नस्ल की छे। प्रश्न एक बार अरु सुनी लियो भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी नस्ल की छे। न इना प्रश्न को उत्तर तो हम आपको जरूर बतावांगा लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम का अंत में तब तक बने रहो हमारा साथ न कार्यक्रम को आनंद लियो। भाई बहनोनी आज राष्ट्रीय कृषि दिवस भी छे। किसान भाई न की समृद्धि आत्मनिर्भरता न कृषि विकास को आधार भी छे। आज भी हमारा देश का बहुत सा लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि न उका से जुड़ेल व्यवसाय न पर निर्भर छे। खेती केवल अनाज उत्पादन को माध्यम नहीं है बल्कि खेती से ही देश की आर्थिक प्रगति खाद्य सुरक्षा न गाँव न का विकास की नींव भी छे। किसान भाई खाली अन्नदाता नहीं है बल्कि राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा का रखवाला भी छे क्योंकि किसान भाई कठिन परिश्रम न हर मौसम में अपना खेत न में खेती का काम करे जेका कारण हम सभी लोग नख अनाज फल सब्जी न समय पर मिलाज। पहले का समय में किसान भाई नख खेती में कई तरह की चुनौती न को सामनो करनू पड़तो थो न जेका कारण कभी कभी उनका उनकी मेहनत को उचित परिणाम नहीं मिली पाते थो जेका कारण उनका आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ते थो। मगर बदलता समय का साथ कृषि में भी नई नई तकनीक न को अपनाई न डिजिटल कृषि प्राकृतिक खेती का अपनाई न खेती में लगातार विकास का मार्ग का

किसान भाई अपनाई रहा है। खेती करने से खाद्यान्न आपूर्ति तो हो जाए, साथ ही उनको निर्यात करी न अपना देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनाए। साथ ही भाई बहनों ने खेती में कई लोग काम कराए जेका से दूसरा लोग न कभी रोजगार मिला जाए। भाई बहनों ने जलवायु परिवर्तन, घटता प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी की उर्वरता में कमी न बढ़ती उत्पादन लागत सी किसान न की उत्पादन लागत भी बढ़ना सी किसान भाई नख समस्या न भी आई। लेकिन एका साथ साथ अगर किसान भाई वैज्ञानिक तकनीक, आधुनिक उपकरण, उन्नत बीज न डिजिटल सेवा न को इस्तेमाल करी न लाभ ले सकज। भाई बहनों ने आधुनिक कृषि में वैज्ञानिक पद्धति न को महत्व लगातार बढ़ी रहो जेमा किसान भाई उन्नत किस्म का बीज लगाई न संतुलित उर्वरक प्रबंधन करी न सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसी कि ड्रेप टपक फवारा पद्धति ने को इस्तेमाल करी न पानी की बचत भी करी सके। साथ अब तो किसान भाई ने मौसम की जानकारी, कीट प्रबंधन न मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व न की जानकारी भी समय पर किसान ऐप पर न कृषि वैज्ञानिक न सी मोबाइल पर प्राप्त हुई जाए जेका से कि खेत न किसान भाई जरूरत का हिसाब से खाद उर्वरक न को प्रयोग करी न होना वाला अतिरिक्त खर्च से बची सकज जेका से उनकी लागत में भी कमी आवज। भाई बहनों मिट्टी को स्वास्थ्य कृषि को आधार आए एक अलग किसान भाई ने अपना खेती की मिट्टी की जांच भी जरूर करानू चाहिए। साथ ही अपना खेत नम कृषि प्रणाली में बदलाव लाणू चाहिए। अनाज का साथ साथ दलहनी तिलहनी बागवानी फसल न बदली बदली न लगाणू चाहिए। साथ ही औषधीय पौधा न नकदी फसल न भी लगाणू चाहिए। न किसान भाई खेती का साथ साथ पशुपालन भी करी न अपनी आमदनी बढ़ाई सके। साथ ही खेती में रासायनिक उर्वरक न कीटनाशक न की जगह जैविक खाद जीवामृत वर्मी कंपोस्ट न जैविक कीटनाशक न को प्रयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगा न कृषि लागत में भी कमी आवेगा। तो भाई बहनों ये तो थी आपकी न हमारी थोड़ी सी चर्चा। भाई बहनों ने अब सुना जियो निमाड़ी लोकगीत जेखा गायो साधना उपाध्याय न साथी न।

0: भाई बहनों ने पहली जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनायो जाए न इनाज विषय पर भेंटवार्ता सुना वन विभाग में पदस्थ कर्मचारी अमित मिश्रा जी से। मिश्रा जी नमस्कार।
1: सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अमित कुमार मिश्रा और वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश वन विभाग में वन रक्षक के पद पर कार्यरत हूं। पत्रकारिता से भी मेरा जुड़ाव रहा है और साहित्य लेखन में मेरी विशेष रुचि रही है। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों में मैं सक्रिय रूप से भाग लेता रहा हूं। आज वन महोत्सव जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने का जो अवसर मुझे आकाशवाणी ने दिया है, उसके लिए मैं आकाशवाणी का और विशेष रूप से वाणी जी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।
1: वन महोत्सव क्या है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए।
2: जी, वन महोत्सव भारत का एक अति महत्वपूर्ण वृक्षारोपण अभियान है जिसे प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं बल्कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण, वृक्षों के महत्व और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। आज बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल स्तर और बढ़ते तापमान जैसी चुनौतियों के बीच वन महोत्सव का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि यदि हमें स्वच्छ हवा, पर्याप्त वर्षा, शुद्ध जल और स्वस्थ जीवन चाहिए तो वृक्षों का संरक्षण अनिवार्य है।
1: जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। वन महोत्सव मनाने की शुरुआत कब से हुई है?
2: जी, वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी द्वारा की गई थी। उनका उद्देश्य था कि वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाया जाए और प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाए। आज यह अभियान पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।
1: अमित जी, जैसे वन महोत्सव के अंतर्गत कौन कौन से काम किए जाते हैं?
2: वन महोत्सव

0: दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे कि वृक्षारोपण अभियान, पौधों का निशुल्क वितरण भी हमारे द्वारा किया जाता है। स्कूलों एवं कॉलेजों में पर्यावरण संबंधी प्रतियोगिताएं आयोजित कर युवाओं को और बच्चों को जागरूक किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम होते हैं। वन एवं वन्य जीव संरक्षण पर संवाद किया जाता है। पौधों की सुरक्षा के लिए टी गार्ड लगाना तथा उनकी नियमित देखभाल करने के लिए भी नागरिकों को उचित निर्देश दिए जाते हैं। वन विभाग का उद्देश्य बानी जी केवल पौधे लगाना तो आखिर नहीं है ना,
1: जी
0: उन्हें जीवित रखकर वृक्ष बनाना भी हमारा ही दायित्व है।
1: जी ये तो आपने ये बहुत ही अच्छी बात बताई कि पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल भी करना बहुत जरूरी होता है।
0: जी
1: वन
0: जी
1: महोत्सव मनाने का उद्देश्य क्या है?
0: वन महोत्सव का सबसे बड़ा उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। वृक्ष में ऑक्सीजन, फल, औषधियाँ, छाया, वर्षा और स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं। वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, भूजल स्तर बनाए रखने में सहायता करते हैं तथा वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। इसलिए वन महोत्सव हमें यह संदेश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल भी करे।
1: अमित जी, जब हमारे द्वारा कोई पेड़ लगाया जाता है तो उसकी देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए ताकि वो बीच में सूखे नहीं, या उस पे किसी प्रकार की खाद आपूर्ति किस प्रकार से करनी चाहिए कि जिस वो अच्छे से बड़ा हो सके?
0: जीवानी जी, मैं आपको साधुवाद दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। पौधा लगाना जितना महत्वपूर्ण है, उसकी देखभाल उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: पौधे को समय समय पर पानी देना चाहिए। उसके चारों ओर सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाया जा सकता है या कम खर्च में आ जाने वाली हम बाड़ भी लगा सकते हैं, उसमें कोई विशेष लागत आती नहीं है। पशुओं से उनकी रक्षा करना ये बहुत जरूरी है। समय समय पर निंदाई गुड़ाई करनी चाहिए और आवश्यकता होने पर खाद भी दे सकते हैं। यदि हम 2-3 वर्ष तक पौधे को नियमित देखभाल करें तो वह एक मजबूत वृक्ष बन जाता है और बरसों तक समाज की सेवा करता है। वृक्ष को कुछ ज्यादा चाहिए नहीं। अगर हम शुरुआती पौधा लगाने के बाद ही आसपास की खरपतवार हटा दें, लगाने का तरीका सही रखें, अंदर हवा ना रह जाए, तो पौधा खुद सरवाइव कर जाता है। बस हम जानवरों से अगर उसे बचा सकें, पशुओं से, तो वो निश्चित ही एक वृक्ष बनता है।
1: अमित जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहले जो पेड़ पौधे हमें हर जगह हरियाली नजर आती थी, लेकिन धीरे धीरे वृक्षों की कटाई हो जाती है जिससे कि हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। तो पर्यावरण के लिए वन या पेड़ लगाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए, अगर हम साधारण रूप से देखें तो अब तो छोटी क्लास का ये बच्चा भी बता सकता है कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है।
1: जी
0: और कोरोना का जो एक दौर इस पीढ़ी ने देखा है, उसके बाद वो ऑक्सीजन के महत्व को समझने भी लगे हैं। लेकिन आप एक बहुत ही प्रखर आकाशवाणी के उद्घोषिका हैं, विदुषी हैं, तो आप जानती हैं कि केवल ऑक्सीजन तो एक फायदा है पौधों से ही, पेड़ों से ही, लेकिन उसके अलावा भी जो पेड़ सेवा देता है अपने पूरे जीवन काल में, मिट्टी के कटाव को रोकता है, हमें फल और औषधियां प्रदान करता है। तो अगर हम देखें बहुआयामी तौर पर, तो एक वृक्ष अपना सर्वस्व मानव जीवन और उसके कल्याण के लिए वो स्वयं को झोंक देता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम केवल पौधों को लगाएं नहीं, बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक उनकी सुरक्षा करें। और मैं मानता हूं, जितना जरूरी पौधों को लगाना है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि जो पहले से ही वृक्ष बन गए हैं, उन्हें कटने से बचाया जा सके।
1: जी अमित जी, बच्चे और युवा लोग वन महोत्सव में किस प्रकार से अपना सहयोग दे सकते हैं?
0: बच्चे और युवा इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत हैं। वे अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या किसी विशेष अवसर पर पौधे लगा सकते हैं। विद्यालयों में पर्यावरण क्लब बनाकर वृक्षों की देखभाल कर सकते हैं। प्लास्टिक का कम उपयोग करें, जल संरक्षण करें और अपने परिवार तथा मित्रों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करें। आज जमाना सोशल मीडिया का है, तो उस माध्यम से भी सकारात्मक संदेश फैलाकर अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा सकता है। आज हमने देखा है कि युवाओं में ट्रेंड चल पड़ा है रील बनाने का और वो उसमें प्रसिद्धि भी पा रहे हैं। तो मैं उनसे आह्वान करना चाहूंगा कि वो अपनी इस कला को, अपनी इस तकनीक में जो उनकी दक्षता है, उसे पर्यावरण की दिशा दें, उस ओर मुड़ें और लोगों को जागरूक करें अपनी रील

0: माध्यम से कि वो पौधे लगाएं, वृक्षारोपण करें और उन्हें सुरक्षित रखें, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें।
1: जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। और रोड किनारों पर भी या हमारे आसपास घर के खाली जमीन जो रहती है उसमें भी पेड़ लगा सकते हैं।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल मानी जी, ये बहुत अच्छा सुझाव आपका है और ऐसा करना भी चाहिए। अगर हम देखें और अतीत में हम झांकें तो जो हमें अशोक का कार्यकाल मिलता है, सम्राट अशोक ने राहगीरों के लिए अपनी सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण से भर दिए थे। जब वो वृक्ष बने तो राहगीरों को धूप नहीं लगती थी, उन्होंने वो काम उनकी सुविधा के लिए किया था। लेकिन अगर हम उससे आज के दौर में देखें तो ये केवल नागरिकों की सुविधा के लिए नहीं है बल्कि पर्यावरण और संपूर्ण मानव जीवन के लिए सकारात्मक हुआ।
1: जी अमित जी, पेड़ लगाने से न हमें केवल शुद्ध वायु या मिट्टी का कटाव रुकता है, साथ ही इससे हमें बहुत सी जड़ी बूटियां, फल यह भी प्राप्त होते हैं।
0: जी,
1: और हमारे किसान भाई भी बागवानी करके नए नए पेड़ लगा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम वन विभाग कृषकों को बांस योजना

0: अमित जी, पेड़ लगाने से न हमें केवल शुद्ध वायु या मिट्टी का कटाव रुकता है, साथ ही इससे हमें बहुत सी जड़ी बूटियां, फल यह भी प्राप्त होते हैं।
1: जी,
0: और हमारे किसान भाई भी बागवानी करके नए नए पेड़ लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम वन विभाग कृषकों को बांस योजना हमारा है, एक बेम्बू मिशन, जिसके तहत हम बांस के पौधे उन्हें वितरित करते हैं। और जब वो कृषक उन्हें अपनी मेड़ पर, खेत की मेड़ पर लगाता है, तो हर साल हम देखते हैं जितने भी पौधे जीवित होते हैं उसके आधार पर वन विभाग उन्हें उसका शुल्क भी उन्हें देता है कि उन्होंने देख रेख की है। तो इस प्रकार का जन जागरूकता अभियान और लोगों को वृक्षारोपण के प्रति मोड़ने, किसानों को उससे फायदा हो, इसके लिए ही वन विभाग प्रयास कर रहा है।
0: अमित जी, अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, मैं किसान भाइयों के साथ साथ आपके सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वन महोत्सव पर केवल पौधा लगाकर फोटो तक उसे सीमित ना रखें, बल्कि उस पौधे को वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल करने का संकल्प लें। आज लगाया गया एक पौधा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और सुरक्षित पर्यावरण देगा। सभी से निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर संकल्प लें, एक व्यक्ति एक पौधा एक जिम्मेदारी। धन्यवाद।
0: अमित मिश्रा जी, आपने वन महोत्सव पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बानी जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आकाशवाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भाई बहनों ने अभी सुनी वन महोत्सव पर भेंट वार्ता, जानकारी दे रहा था वन विभाग में पदस्थ अमित मिश्रा जी। भाई बहनों ने अब सुना जियो निमाड़ी लोकगीत, जेखा गायो शिवकरण साथ न साथी न।

भाई विंडोणी, अब खंडवा मंडी भाव से प्राप्त भावना की जानकारी देते हुए सोयाबीन का भाव रहा 5,750 रुपया से 6,825 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं का भाव रहा 2,278 रुपया से 2,657 रुपया प्रति क्विंटल। चना का भाव रहा 5,200 रुपया से 5,850 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का का भाव रहा 2,100 रुपया से 2,175 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर का भाव रहा 5,601 रुपया से 7,300 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग का भाव रहा 6,831 रुपया से 7,481 रुपया प्रति क्विंटल। भाई बिंडोनी, अब मौसम की जानकारी दई देवान। आज सूर्योदय प्रातः 5:43 मिनट पर हुयो, न सूर्यास्त शाम 7:10 मिनट पर हुयो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहो, न रात को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहना की संभावना छे। भाई विंडोनी, अब एक करुणिमाड़ी लोकगीत सुनी लेवान, जेखा गायोज ओम प्रकाश बाम ने न साथी न।

भाई बहनों, अब समय छे कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछा गया प्रश्न को उत्तर बताने को। तो आज को हमारो प्रश्न तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी नस्ल की होए? नहीं ना प्रश्न को उत्तर छे, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस मुर्रा नस्ल की होए। नहीं ना उत्तर का साथ ज हमारा कार्यक्रम को समय भी यहाँ पूरा हो। तो आज्ञा देव आपकी बहन वाणी महोदय का राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में झलकी आपके लिए लेकर आए हैं दिवा स्वप्न, लेखक मनुभाई देसाई, निर्देशक सत्येंद्र शरत।
1: हेलो, हाँ ये 54808 है। कौन? सुषमा। हाँ हाँ, मैं उषा बोल रही हूँ। कहो, अच्छी हो ना? और तुम्हारे पति परमेश्वर? अच्छा, लंच लेकर थोड़ी देर आराम कर रहे हैं? अरे बड़ी भाग्यवान हो सुषमा, यहाँ तो अभी तक अपने उनके इंतजार में बैठे सूख रहे हैं। देख लो ना, 2 बज गए हैं। अरे नहीं रे, एक दिन की बात नहीं, ये तो रोज की कहानी है। रोज ही खाने के लिए घर आते इनको 2-3 बज जाते हैं। नहीं नहीं, मैं बढ़ा चढ़ा कर बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो कि ये दोनों हाथों से लक्ष्मी बटोर रहे हैं, मगर मैं पूछती हूँ सुषमा, इस लक्ष्मी की जरूरत किसे है? पैसे के लिए इतनी हाय हाय क्यों? मेरे लिए? तुम भी मुझे गलत समझ रही हो सुषमा, आवश्यकता से अधिक मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ ये भी मेरी तरह संतोष रखें और जितना जरूरी हो उतने ही हाथ पांव मारें। काम काम काम, जब देखो काम, काम के पीछे अपने आप को मिटा देने का इरादा है क्या? पता नहीं इनके मन में पैसे के लिए इतनी लिप्सा क्यों जाग गई है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं इस पैसे को लेकर क्या करूंगी? क्या कह रही हो तुम? अरे एक बार नहीं, 50 बार कह चुकी हूं, आए दिन इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। अरे एक भी नहीं सुनते मेरी। क्या? छोड़ भी, न प्यार न डांट फटकार, इन पर किसी चीज का असर नहीं होता। चिकने घड़े हैं ये। सुषमा शायद वो आ गए, किसी की आहट आई है। अच्छा शाम को फोन करूंगी। हाँ हाँ।

0: साहब, आज मैंने कहा फोन से छुट्टी मिल गई हो तो आपसे प्रार्थना की जाए कि इस नाचीज की तरफ भी ध्यान दीजिए।
1: क्या ध्यान दूं आपकी तरफ? आरती का थाल लाऊं सजाकर आपके लिए? 2:30 बज रहे हैं, अब तो मंदिर में भी भगवान के शयन का समय हो गया है।
0: बस इतने ही व्यंग्यबाण हैं आपके पास? कुछ और भी तो जलीकटी सुनाइए। सुबह से निकले थके मांदे आदमी के दिन में घर लौटने पर क्या इससे ज्यादा स्वागत उसका नहीं किया जा सकता?
1: जरूर किया जा सकता है। हाँ, आप तो इससे ज्यादा स्वागत के अधिकारी हैं।
0: तो फिर रुक क्यों गई? जो कुछ आपके मन में है उसे बाहर ले आइए, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए।
1: कसर तो आपने नहीं छोड़ी है कोई, एक दिन हो दो दिन हो, मगर यहाँ तो हफ्ते और महीने निकलते जा रहे हैं और आपके रूटीन में इंच भर का फर्क नहीं आ रहा है। सुबह भागते भागते नाश्ता करते हैं, दिन का खाना खाने के लिए आपको 3 बजे घर आने की फुर्सत मिलती है। खाना दिन में कई बार ठंडा होता है, कई बार गर्म होता है। मेरी एक आंख दरवाजे पर रहती है, दूसरी घड़ी पर। एक कान दरवाजे की घंटी पे लगा रहता है, दूसरा फोन पर। आप अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, और इतनी प्रतीक्षा के बाद हाथ पल्ले क्या लगती है? निराशा। आप आते हैं 2:30 बजे, कभी 3 बजे, और कभी उस समय जब लोग शाम की चाय पीकर घर घूमने के लिए बाहर निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ, मेरी भी तो कुछ भावनाएं हैं, मैं भी तो आपके साथ घर या बाहर थोड़ा बहुत समय बिताना चाहती हूँ।
0: तुम ठीक कहती हो उषा, मुझे तुम्हारे प्रति कुछ ज्यादा कंसिडरेट होना चाहिए, मगर तुम्हें भी तो मेरे प्रति थोड़ा बहुत कंसिडरेट होना चाहिए। तुम्हें मालूम है मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, नया कारखाना प्लान कर रहा हूँ। कदम कदम पर इतनी समस्याएं, इतनी उलझने सामने आती हैं कि सांस तक लेने की फुर्सत नहीं मिलती। कई बार तो इतनी घुटन महसूस होती है, लगता है चक्की का पार्ट गले में डाल लिया है।
1: यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तुमने ये चक्की का पार्ट गले में क्यों डाल लिया है? क्या इस नए बिजनेस के शुरू करने से पहले हम लोग भूखे मर रहे थे?
0: नहीं, लेकिन जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे थे वो कुछ जिंदगी थी। छोटा घर, सीमित आमदनी, सब सुख सुविधाओं का अभाव।
1: हाँ, अब घर बड़ा हो गया है, आमदनी बढ़ रही है। हाँ, सपना तो कम से कम इस बात का देखा ही जा रहा है। सुख सुविधाएं भी पहले की तुलना में ज्यादा हो गई हैं, मगर अब घर के स्वामी को इस बड़े घर और इन सुख सुविधाओं का उपभोग करने का अवकाश नहीं है। भाग्य का ये कितना बड़ा व्यंग है।
0: उषा, ये कुछ ही दिनों की तो बात है, एक बार काम चल निकलेगा तो फिर मुझे अवकाश ही अवकाश रहेगा। फिर तो सारा समय तुम्हें और घर को ही दूंगा मैं।
1: ये दिन हफ्तों में बदल जाएंगे, हफ्ते महीनों में और महीने वर्षों में, और आपको कभी अवकाश नहीं मिल पाएगा। एक समस्या मिटेगी तो दूसरी नई समस्या आ खड़ी होगी, वो खत्म होगी तो एक बिल्कुल ही नई समस्या आपको घेर लेगी, और आपका जीवन कोल्हू के बैल की तरह एक निश्चित दायरे में गोल गोल घूमता जाएगा।
0: तुम मुझे कोल्हू का बैल कहती हो उषा? मेरी ऊपर उठने की आकांक्षाओं का मजाक उड़ाती हो।
1: आपके जीवन में कुछ करने या ऊपर उठने की महत्वाकांक्षाओं का नहीं, मैं दिवा स्वप्न देखने की आपकी आदत का मजाक उड़ाना चाहती हूँ।
0: मैं दिवा स्वप्न देखता हूँ?
1: हमारा विवाह हुए 14 वर्ष हो चुके हैं और आपने अभी तक दिवा स्वप्न देखने के अलावा कुछ नहीं किया है। यदि इस बीच में स्कूल की नौकरी ना करती होती तो शायद हम लोग भूख से मर गए होते। कर्जदार तो खैर हम हो ही गए थे।
0: तो क्या इन 14 वर्षों में मैंने कोई उद्यम, कोई कोशिश नहीं की है?
1: की है, मगर आपकी सारी कोशिशें असंभव को संभव बनाने की थी, इसीलिए आप असफल रहे। आपने कभी कोई ऐसा काम हाथ में नहीं लिया जो आपकी शक्ति और आपके साधनों की पहुंच के अंदर होता। आपने किसी छोटे काम में हाथ नहीं डाला, आपने वही प्रोजेक्ट हाथ में लिए जिनमें सैकड़ों नहीं हजारों और लाखों रुपए पाने के सपने छिपे थे, और क्योंकि उन सपनों की नींव मजबूत नहीं थी इसीलिए जल्दी ही वे सपने आकाश से नीचे आ गए, उसी निर्दय निर्मम धरती पर जहां गिरगांव रोड की हमारी वो अंधेरी, तंग और सीलनदार खोली थी, जहां दिन में भी कॉकरोच घूमते रहते थे।
0: हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को शुरू में थोड़ी बहुत असफलता मिलती है, उससे निराश होकर वो हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी ही बैठ जाता है।
1: मैं कहती हूँ तुम समझते क्यों नहीं, मैं तुम्हें अकर्मण्य होकर घर में छिपे बैठने के लिए तो नहीं कहती हूँ, नहीं मैं ये कहती हूँ कि तुम सपने मत देखो।
0: हो तो फिर तुम क्या कहती हो?
1: यही कि सपने देखो मगर दिवा स्वप्न नहीं। थोड़े से काम शुरू करो, छोटा काम शुरू करो, उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊपर ले जाओ और इस तरह अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करो। छोटा सा पौधा ही धीरे धीरे बड़ा होकर एक दिन विशाल वृक्ष

0: तुम लाख कोशिश करो, तुम एक महीने में धरती पर एक बहुत बड़े वृक्ष की जड़ें नहीं जमा सकते, और तुमने आज तक ऐसा ही करने की कोशिश की है।
1: मगर अजय तो कहता है कि योजनाएं बड़ी ही होनी चाहिए। छोटी योजना तो मालगाड़ी की तरह होती है जो खिसट खिसट कर चलती है, और कभी कभी तो छोटे से फासले को तय करने में महीनों लगा देती है। बड़ी योजनाएं सफल होने पर आदमी मिनटों में मालामाल हो जाता है।
0: आप मिनटों में मालामाल होने की भावना मन से निकाल दीजिए ना। मैं कहती हूँ क्या कीजिएगा मिनटों में मालामाल होकर, चार रोटी की जगह आप आठ रोटी खाने लगेंगे। ये जो सूट आपने पहन रखा है इसके ऊपर आप दूसरा सूट पहनने लगेंगे।
1: नहीं, लेकिन तब मैं इससे बढ़िया फ्लैट ले लूंगा, घर में सुख सुविधा ऐश्वर्य का अधिक सामान ले आऊंगा। जीवन की इस दौड़ में मैं किसी से पीछे क्यों रहूं? अजय कहता है।
0: ओहो, आप अजय भाई की बातों में।
1: ओहो, एक मिनट रुको, देखता हूं कौन आया।
2: हेलो अनिल।
1: अजय, अरे भाई बहुत बड़ी उम्र तुम्हारी, अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था।
2: हाँ, तभी मुझे लग रहा था कि कोई मुझे याद कर रहा है। भाभी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अरे ये क्या, मेरे इंतजार में अभी तक खाना मेज पर ही रखा है। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी भाई, आप लोग खा लेते, मैं तो घर से थोड़ा बहुत खा कर ही चला था।
1: मगर ये बात नहीं है अजय, खाना अभी तक न खा सकने का कारण वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। दरअसल हुआ ये कि घर में घुसते ही आज तुम्हारी भाभी मुझ पे बरस पड़ी।
0: अब रहने दीजिए ना अजय भाई।
2: ना ना ना ना, अजय भाई से कोई पर्दा ना रखिए। भाभी बताइए आज आपने अनिल को किस बात पर?
1: अच्छा अच्छा, देखो मैं बताता हूँ। अजय, तुम्हारी भाभी कहती हैं कि मैं दिवा स्वप्न देखता हूँ।
2: ठीक कहती हैं। मैं पूछता हूँ कौन दिवा स्वप्न नहीं देखता, और जो नहीं देखता वो क्यों नहीं देखता? ये दुनिया कायम ही दिवा स्वप्नों पर है। भाभी, दिवा स्वप्न देखने वाला आदमी ही अपने दिवा स्वप्नों को साकार करता है।
0: जैसे आपके भाई साहब इन 14 वर्षों से साकार कर रहे हैं।
2: पिछली बातों को छोड़िए भाभी, जो बीत गई सो बीत गई, अब की बात कीजिए अब की। इस बार हम दोनों ने जो योजना बनाई है आप उसे सुनेंगी तो फड़क उठेंगी। क्या प्रोजेक्ट है। बस भाभी ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी के आकाश से धरती पर उतरने के लिए सीढ़ी लगा दी है।
0: अजय भाई एक बात बताएंगे?
2: छोटी छोटी दो बताऊंगा, आप पूछिए तो।
0: इससे पहले आज तक आप ठीक इसी तरह के कितने प्रोजेक्ट बना चुके हैं?
2: ध्यान नहीं आता, मगर शायद 3-4 प्रोजेक्ट।
0: 3-4 नहीं, 30-40 प्रोजेक्ट आप बना चुके हैं, और उनका नतीजा क्या हुआ है? लक्ष्मी के धरती पर उतरने की जगह आप अपने पार्टनरों को, जिनके साथ आपने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनको आप धरती पर उतार चुके हैं।
2: इससे क्या होता है भाभी, इंसान अपनी असफलता से भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही है। अब तक के अपने सारे अनुभवों का निचोड़ मैंने इस बार इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है जो मैं अनिल के साथ बना रहा हूँ। सब कुछ फाइनल हो गया है, ब्लूप्रिंट रेडी है, ड्राइंग्स तैयार हैं, बस थोड़े फाइनेंस का प्रबंध और होना है, जिसके लिए अनिल और हम भाग दौड़ कर रहे हैं। वो होते ही मशीनरी फिट हो जाएगी। इस पूर्णिमा को कारखाने का उद्घाटन होगा। और भाभी आपने वो कहावत तो सुनी होगी, उतावला सो बावरा और धीरा सो गंभीरा। आप थोड़ा धीरा जाओ रखिए, बस 3-4 महीने में ही एयर कंडीशनड कार होगी, बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे, और हम सब लोग वर्ल्ड टूर के लिए निकल पड़ेंगे।
0: ब्लू प्रिंट, ड्राइंग्स, प्लान, साइट, प्रोजेक्ट, फाइनेंस, एयर कंडीशन कार, वर्ल्ड टूर, बस कीजिए बाबा बस कीजिए, ये सब सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए।
2: भाभी।
0: हाँ जय भाई, ये सब दिवा स्वप्न है, ये सब कागजी घोड़े हैं, यथार्थ की तेज हवा में ये आकाश में उड़ जाएंगे। अपने भाई साहब को इन झूठे सपनों में मत बहलाइए, उन्हें धरती पर ही खड़े रहने दीजिए, आपकी बड़ी कृपा हो।
1: उषा, ये क्या कह रही हो तुम? अजय मेरा शुभचिंतक है, मेरे भले ही के लिए सब कर रहा है।
0: अजय भाई और शुभचिंतक, कब से 100 चूहे खाने के बाद बिलाव चूहों का शुभचिंतक बन गया? पूछिए तो जरा इनसे, आप जैसे कितने सीधे और भले दोस्तों का सर्वनाश ये अब तक कर चुके हैं, इन्होंने अब तक जिंदगी में किया क्या है? बस दोस्तों को सब्ज बाग ही दिखाए हैं, वही अब कर रहे हैं।
1: बस करो उषा, होश में तो हो तुम।
2: नहीं नहीं अनिल, भाभी को जो कुछ कहना है उन्हें कहने दो।
0: हाँ, आज मुझे जो कुछ कहना है मैं जरूर कहूंगी, मैं इतने दिनों से अपने पे बहुत सब्र कर रही हूँ, मगर अब बात बर्दाश्त के बाहर है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अजय भाई, आप इन्हें एयर कंडीशन कार और वर्ल्ड टूर के दिवा स्वप्न न दिखाई। हम लोग जिस हाल में हैं, हमें उसी में रहने दीजिए। घी से चुपड़ी 2 रोटी का लालच दे, हमें जो रूखी सूखी मिल रही है उसे भी हमसे मत छीनिए। आप कृपा कर यहाँ से चले जाइए, और फिर आइंदा यहाँ आने और इन्हें अपनी मीठी बातों के फंदे में फंसाने की कोशिश न कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।

0: जैसे आपकी इच्छा। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा अनिल। है
1: ये तुमने क्या किया उषा?
2: मैंने जो भी किया ठीक किया। भूल गए अभी अभी अजय भाई ने क्या कहा था, उतावला सो बावरा और धीरा सो गंभीरा। हम लोग कोई छोटा काम करेंगे और धीरज के साथ उसके परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। एक महीने में लखपति बनने की मिथ्या आशा में हम अपने जीवन को नष्ट नहीं करेंगे। हम अपने जीवन को संवारेंगे, सुधारेंगे, ताकि हमारे बच्चे ईमानदार और परिश्रमी बन सकें। और हमें चाहिए भी क्या?
1: तुम ठीक कहती हो उषा, तुम ठीक कहती हो।

दिवा स्वप्न, ये झलकी अभी आपने सुनी। लेखक मनुभाई देसाई, निर्देशक सत्येंद्र शरत। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण के गाए इस गीत से। अनमोल फिल्म का ये गीत है, रविंद्र रावल के बोल हैं, राम लक्ष्मण की धुन है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले

0: कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया, मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
1: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
2: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और उदित नारायण का गाया हुआ ये नगमा। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। गीत के बोल समीर के लिखे हैं और सुरों में पिरोया है जतिन ललित ने।
4: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
5: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सोनू निगम का गाया हुआ वास्तव फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है समीर ने, सुरों में पिरोया है जतिन ललित ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ ये गीत आपने सुना, समीर ने लिखा था, जतिन ललित ने सुरों में पिरोया था, फिल्म का नाम था अलबेला। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहब्बतें फिल्म का ये गाना।

इस गीत के साथ ही अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। ये विविध भारती है, कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।

0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
1: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समय अनुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के

0: अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी

0: आकाशवाणी।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: संघर्ष फिल्म का ही गाना आप सुन रहे थे, सोनू निगम का गाया हुआ। समीर ने गीत लिखा था और जतिन ललित ने संगीत से संवारा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब सुनते हैं आपके लिए कार्यक्रम का अगला गाना साया फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, जिसे संगीत से सवारा है MM क्रीम ने।

आइए अब सुनते हैं खिलाड़ी फिल्म का गाना अभिजीत और अलका याग्निक का गाया हुआ। अनवर सागर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु

जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो चल।
1: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामी, आग की त्रासदी है कि वो हमें झुलसा देती है। हाँ, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है और बुझते बुझते एक जमाना बीत जाता है। हम ता उम्र किसी आग में जलते रहते हैं, नफरत की आग या फिर प्रेम की अगन। धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, लगता है किसी का इश्क जल रहा है इन दिनों।

कहते हैं नफरत आग लगा देती है और प्रेम की एक बूंद बड़ी से बड़ी आग बुझा देती है। जिनके दिलों में नफरत होती है उनकी जुबां सिर्फ आग ही उगलती है और ये आग सिर्फ धुआं ही छोड़ती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती है।

हमारा प्यार जैसे जंगल की आग था, और कहते हैं अगर इश्क की आग दिल में लगी हो तो सुकून कभी मिलता नहीं है। अब आग को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। चूल्हे में लगी आग खाना पकाती है और पेट की आग को शांत करती है, लेकिन यही आग जब रिश्तों में लग जाए तो घर जलकर खाक हो जाते हैं। यानी आग का अपना एक गुण है, आग ठंड में राहत देती है और यही आग गर्मी में झुलसा देती है। ये सीने की आग है साहेब, यहाँ पानी का क्या काम। ये सीने की आग है साहेब, यहाँ पानी का क्या काम। किया हमने महज इश्क ही तो था कमबख्त, किस्मत ही निकली बेईमान।

इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आग, जी हाँ आग, कुछ नहीं बोलती। वो अपने को समेटकर चुपचाप माचिस की डिबिया में पड़ी होती है, पर कभी कभी ना राख उड़ती है ना उठता है धुआं। कुछ रिश्ते बस चुपचाप जला करते हैं। हालांकि खुद को अगर हमने परिश्रम की भट्टी में झोंक दिया तो हीरा बनकर बाहर निकलते हैं, यानी ये आग आपको जलाकर खाक भी कर सकती है और यही आग कांच को हीरा भी बना देती है।

ये आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है, ये जिंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। कहते हैं आज केवल आग में ही नहीं पाई जाती, कभी एकांत में स्वयं के भीतर के तापमान को जांच कर देखना। भीतर का मौसम भभक रहा होता है कई बार, और मन उस आंच में सिकता रहता है धीरे धीरे धीरे धीरे। इन दिनों मौसम जैसे धुआं धुआं सा है, हर तरफ एक आग और फुगा सा है।

आग को साधते हुए कई बार आग से खेल जाते हैं हम, और यही है वो आग, सना है जिसका ताप जीवन की खुशबू से। हाँ, लक्षित नहीं होता है जीवन के ठंडे और धूसर राख भरे अवसाद के नीचे। हमारे भीतर भी एक आग बची होती है, और इसी आग में प्यार और नफरत सिकते रहते हैं। इसी आग में जलते हैं सपने, ख्वाबों का जंगल भी इन्हीं लपटों से झुलस जाता है, और जंगल में फैली ये आग जल्दी बुझती भी तो नहीं।

0: तो क्या है।
1: और अब छाया गीत समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
1: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना के, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, हमने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में

0: Sivanshi has been kept on bench. The men in blue will look to bounce back from the shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर आपकी सेवाओं में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।